हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवियो भेग विगाली सतगुर सेव खर्च हर बंधो मत जानो आज के काली हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपिया से हर होए हर मिलिया केल कलाली हर हर जपन जप लो चल चानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मिलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पै हर स्वामी हम चातरक बिल बलाती बिललाती हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हम निमखाती हर बिन रह न सको एक राती ज्यों बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हर मर जाती रहाओ तुम हर सर्वर अत अगा हम लह न सके अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो हो आपन गाती हर के संत जना हर जपियो गुर रंग चलू ले राती हर हर भगत बनी अत सोभा हर जपियो उत्तम पाती आपे ठाकर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कल युग का धर्म कहो तुम पाई केव छूटे हम छुटकाकी हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपियो तरह तरह की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपाव हो अपना हम मागी भगत काकी रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर वचनाकी लेखा चित्रगुप्त जो लिखिया शब छूटी जमकी बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिन यर सूर तृष्णा अगन बजानी शिव चरियो चंद चंदाकी तुम बड पुरख बड अगम गोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसाकी तनासरी महला चौथा कर पंजवां दोप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद और तार विचार मरार मोरम मन मोहन नाम जपीने अदृष्ट गोचर अपरंपर स्वामी गौर पूरे प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सत संग पै हर कंचन चंदन कीने रहाओ नवशे खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इवना पतीने जन नानक हर हिरदे सत्यावो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लोह कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावे फिर जन्म न आवह हर हर हर जोत समाई जप मन नाम हरि हो सर्व सुखी हर जस ऊज सबना ते ऊपर हर हर हर सेव छडाई रहाओ हर कृपा निदकीनी गुर भगत हर दीनी तब हर सिंह प्रीत बनाई बहु चिंत बसारी हर नाम उर तारी नानक हर पै है सखाई तनासरी महला चौथा हर पाढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पौजल पार उतारी मन बचन हृदय त्याई हर हुए संतुष्ट एव पान हर नाम मरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीर्त कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब पयो मन उद्दम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जान नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परियो है सरन तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध तेतीस कोट मुन जन सब चाह है हर जियो तेरो नाऊ गुर प्रसाद को बिरला पावे जिन कोल लाट लिखिया तुर पाओ जप मन रामे नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी हो तिनके साथ बलिहारे जाऊं रहाओ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हो पाओ
दीन दयाल कृपा कर दीजे। नानक हर सिमरन का है चाओ। तना श्री महला चौथा। सेवक सिख पूजन सब आव है, सब गावे हर हर उत्तम बानी। गाव्या सुनया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। बोलो भाई हर कीर्त हर पव जल तीर्थ, हर दर तिन की उत्तम बात है संत हो। हर कथा जिन जनो हो जानी, रहाओ आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज बडानी। जा नानक आ मलाए सोई, हर मिलसी अवर सब त्याग। ओहा हर पानी। तना श्री महला चौथा। इच्छा पूर्क सर्व सुखदाता, हर जा के बस है काम तेना। सो ऐसा हर त्याये मेरे जियड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। जप मन सत नाम सदा सत नाम, हालत पलत मुख उजल होई है नित त्याये। हर पुरख निरंजना रहाओ, जय हर सिमरन पया तै अपाद गत कीनी। बड़ पागी हर जपना, जा नानक गुर ए मत दीनी। जप हर पव जल तरना, तना श्री महला चौथा। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी बेदन तू जानता साहा। अवर क्या जाने कोए रहाओ, साचा साहिब सच तू मेरे साहा। तेरा किया सच सब होए, झूठा किसको आखिए साहा। दूजा नाही कोए, सबना विच तू बरतदा साहा। सब तुझे त्यावे दिन रात, सब तुझ ही था वो मंग दे मेरे साहा। तू सबना करे एक दात।

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं मा प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जेको जाने भयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव एक कृष्णं सर्व देवा देव दिवात आत्म।

शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे सबको सच समावैर ग्रह रह प्रभू राम नाम देवा मैसूर नायले प्रशत जाए नानक तो मुखंतर पाए जज मैं जोर श्री चंद्र रावल कान कृष्ण जादम प्या पार जात गोपी लय आया वृंदावन में रंग किया कल में वेद अथर्वण हुआ नाव खुदाई अला प्या नील वस्त्र लय कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हुए सचार परे गुणे

सुरठ महला पंजवां प्रभ की शरण सगल पै लाथे दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभ की शरण सगल पहला थे दुख बिन से सुख पाया

तान तान तुम मना मूरख मुग्ध अनाथ चंचल बालहीन नीच अजाना बिरवंत नानक शरण तेरी रख लियो आवण जाना मूर्ख मुग्ध अनाथ चंचल बालहीन नीच अजाना बिरवंत नानक शरण तेरी रख

अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावों कल कलेश तरमाय मिटावों सिमरों जास सुमर एक है नाम जप अगंत अनेक है भेद प्राण सिमर सुध आखिर किने राम नाम एक आखिर किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखी एक है दर्श सुहारो नानक उन संग मोय उधारो सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम भक्त मना भक्त जन कह मन विश्राम रहाओ प्रभ का सिमन गर्भ न बसै प्रभ का सिमन दुख चम नसै प्रभ का सिमन काल पर हरै प्रभ का सिमन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछु बिघ न लागै प्रभ का सिमन अन दिन जागै प्रभ का सिमन भव न व्यापै प्रभ का सिमन दुख न संतापै प्रभ का सिमन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ का सिमन रिद सिद्ध नौ निद प्रभ का सिमन ज्ञान ध्यान तत् बोध प्रभ का सिमन जपता पूजा प्रभ का सिमन बिनसा दूजा प्रभ का सिमन तीर्थ शनानी प्रभ का सिमन दरगाह मानी प्रभ का सिमन होय सो भला प्रभ का सिमन सुफल फला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ताक लागो पाए प्रभ का सिमन सब ते उच्चा प्रभ का सिमन उदरे मूचा प्रभ का सिमन तृष्णा बुझा प्रभ का सिमन सब के सुजा प्रभ का सिमन नाही जम त्रासा प्रभ का सिमन पूर्ण आसा प्रभ का सिमन मन की मल जाए अमृत नामृत माय समाए प्रभ जी बसा साध की रसना नानक जन का दास सुन दसना प्रभ को सिमरन से धन वनते प्रभ को सिमरन से पात वनते प्रभ को सिमरन से जन प्रवान प्रभ को सिमरन से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरन से बेमोहताजे प्रभ को सिमरन से सर्व के राजे प्रभ को सिमरन से सुखवासी प्रभ को सिमरन सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिन्हें आप दल्ला नानक जन की मंगर वाला प्रभ को सिमरन से परोपकारी प्रभ को सिमरन तिन सतबलहारी प्रभ को सिमरन से मुख सुहावी प्रभ को सिमरन तिन सुख बिहावा प्रभ को सिमरन तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरन तिन धर्म रीता प्रभ को सिमरन तिन अंध कनेरे प्रभ को सिमरन बसे हर नेरे संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरा भाग प्रभ का सिमरन कार्ज पूरे प्रभ का सिमरन कवन चूरे प्रभ का सिमरन हर गुण बानी प्रभ का सिमरन सहस मानी प्रभ का सिमरन दे चल आसन प्रभ का सिमरन कमल विकासन प्रभ का सिमरन अनहसन कार सुख प्रभ सिमरन का अंतन पार सिमरन से जन जिनका प्रभ मया नानक तिन जन शरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रटाए हर सिमरन लग भेद पाए हर सिमरन पै सिर जति जाते हर सिमरन नी चौकुंट जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिम सिमर हर कारण करना हर सिमरन क्यों सगरे कारा हर सिमरन मैं आप नंकारा कर कृपा जिसे आप बजाया नानक गुरु मुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर दुख पंजना कटकट नाथ नाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ हस्पदी जय मात पिता सुतमीत न पाई मनुहा नाम तेरा संग साई जय महा प्यान दू जम दलै त केवल नाम संग तेरा चलै जय मुश्किल हो वैत पारी हर को नाम खिरमाय उदारी अनक पुनः चरण करतनी तरह हर को नाम कोट पाप पर है गुरमुख नाम जपू मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जप तुए सुखिया ला करोरी बांध ना पर हर का नाम जप तु निस्तरा अनक माय रंग तिख नाम बुझावै हर का नाम जप त्यागावै जे मार्गे जात केला तै हर नाम संगो सोहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूट नहीं कोट लख बाही नाम

ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬੂ ਨਾ ਧੋਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੂ ਮਨ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਜੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਇ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ, ਜੇ ਪੈਂਡੈ ਮਹਾਂਤ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜੀਆਰਾ, ਜਾ ਪੰਥਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਜਾਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਨਾਲ ਪਛਾਣੂ, ਤੈ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ, ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਜਿਆ ਕਰਖੈ, ਤੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੈ, ਭਗਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ, ਸੰਤਨਾ ਕਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦੁਰੇਜਨ ਕੋਟ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਹਰਿ ਉਪਸਾਦ ਕੁਮਾਤ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀ ਨੋਦਾਨ, ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤ ਜੋਗਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪ ਭੋਗਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਾ ਪਰ ਨ ਭੰਗ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵੜਿਆਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਸੁਭਾ ਪਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾ ਵਿਯੋਗ, ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਲਖ ਜੀਨਾ, ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪ ਪ੍ਰਭਦੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਉਠਸਤਾਣੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨੇ ਵਰਨ ਜਾਣੀ, ਪੋਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸਰਾਤੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਰ ਨਾਮ ਰਸਮਾਤੇ, ਆਠ ਪੈਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਪੋ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੀਤੇ ਤਰੇ, ਪਾਰ ਜਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨ ਦਰ ਦੁੱਖ ਲਥਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦਵਸ ਹੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਵਨਸ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਉਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛਵ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋ ਸਲੋਕ, ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ, ਪੂਛ ਨਾਈ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਬੋਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਚਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸਹਿਜ ਸੁਸਿਮ੍ਰਤ ਗਿਆਨ, ਕੋ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਫਿਰਿਆ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਬਹੁ ਜਿਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਧਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਈ ਹੋਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਨੌਕਣ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਰੈ ਚਿਰਜੀਵੈ, ਮਾਂ ਉਦਾਸ ਤੀਸਰਤੀ ਵੈ, ਅਗਨ ਮਾਇ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਣ, ਕਣਕ ਅਸੁ ਹੈ ਵਰਪੂਨ ਦਾਨ, ਨਿਓਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ, ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ, ਨਿਮਫ ਨਿਮ ਕਰ ਸਰੀ ਕਟਾਵਾ, ਤਉ ਪੀ ਹੋਮੈ ਮਿਲ ਨ ਜਾਵੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਤ ਪਾਹਿ, ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਧੀਰ ਦੇ ਛੁੱਟੈ, ਗਰਗ ਮਾਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੋਟੈ, ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਅਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਧਨ ਤੇ ਜਾਤ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਕਭੂ ਨਾ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ, ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇ ਅਨੀਤ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਂ ਕਾਚੀ ਭੀਤ, ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤ ਬਹੁ ਮੂਚ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ, ਅੰਕ ਯਤਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰਾਪੈ, ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ, ਕੋਟ ਪਾਪ ਦਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਿਜੈ, ਛੂਟ ਸੁਨਾਈ ਉਪਿਆਲ ਮੋ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ, ਔਰ ਕਰਤੂਤ ਜਗਲੀ ਜਾਮਡਾਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿ ਸਵਾਏ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗਾ, ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਿਦਾ ਸਤਗਾਵੈ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੂਰੈ, ਸਾਹ ਸੰਗੇ ਹੋਮੈ ਛੂਰੈ, ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ, ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੈ, ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ, ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਹ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗੁਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਾਟ ਘਟ ਚੀਨਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪਟਾਨਾ, ਪੇਖਾ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮ੍ਰਿਸ਼ਟ ਏਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ, ਨਿਰਤਨ ਕਹੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ, ਨਿਥਾਵੇਂ ਕਹੋ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ, ਨਿਮਾਨੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇਵ ਦਾਨ, ਕਰਨ ਤ੍ਰਾਵਣ ਹਰ ਸਵਾਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ, ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭਰਾਤੇ, ਤੁਮਰੀ ਅਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੋਏ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਾਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲਹਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ, ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ, ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਤਮ ਥਾਨ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਘੱਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ, ਨਿਰਗੁਣ ਹਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਨਿਰਗੁਣੀ ਹਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤੇ ਚੀਤ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਮਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਮਨ ਨਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਹ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਕਰ ਅਗਰ ਮੰਜਨ ਉਵਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਵਸਾ ਤੁਜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੂਧ, ਭਰ ਜੋਵਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਤ, ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸਹਿਨ, ਮੁਖ ਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕੌ ਦੈਨ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਜੈ, ਬਖਸ਼ ਲੇਹ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ,
जे प्रसाद धारी उपर सुख बसा सुत प्रात पीत भरता संघस है। जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पाव कुमुला। जे प्रसाद पुगै सब रसा सगल समग्री संग साध वसा। दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संरचना। ऐसे दोग मूढ़ अंध व्यापे नानक काल लेव प्रभ आपे। आद अंत जो राखन हार तेसो प्रीत न करा गवार। जाकी सेवा नवनित पावै तासो मूढ़ा मानी लावै। जो ठाकुर सा सदा हजूरे ताको अंधा जान दूरे। जाकी टैल पावै दुर्गामा सब सारा मुक्त अजान। सदा सदाए पूरन हार नानक राखन हार पार। रतन त्याग कौड़ी संगरत सा छोड़ झूठ संग मचा। जो छड़ना सो अस्थिर करमाना जो होवन सुदूर प्राणा। छोड़ जाए तिसका श्राम कर संग साई तिस पर हर। चंदन लेव तारा तोहे घर दो प्रीत भस्म संग होए। अंत कू मैं पत बकराल नान काल लियो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा कर दिन रात। पार पेख अंतर मन माया शब्द ना कश करश पाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापा लोभ स्वान। अंतर अगन बार तन स्वा गल पाथर कैसे तरह था। जा कै अंतर बसा प्रभ आप नानक तेजन सह समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गै लियो उड़न भावै। कहाँ बजारत पूजा डोरा निस कही है तहो समझा पूरा। कहाँ विष्णु पद गावै गोंगो जतन करा तहो पीसुर भंग। कै पिंगल पर्वत प्रभवन नहीं हो तूहा उस गवन। करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुरी कृपा तरै। संघ साई सुहावना चीत जो बाराई तासे प्रीत। बलगुआ के ग्रह पीत्र वसै अंध केर माया रंग रसै। दृढ़ करमाना मन प्रतीत काल नावै मुड़े चीत। वह ब्रोध काम क्रोध मोह भी झूठ विकार महालोक त्रो। याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख दे अपन कर कर्म। तुम ठाकुर तुम पैर दास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख नेरे। कोई न जाना तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरा सूत्र धारी तुम ते उस आज्ञाकारी। तुमरी गात मेत तुम ही जानी नानक दास सदा कुरबानी। श्लोक देन हार प्रभु छोड़ का लागे आन सुवाए। नानक नसी जई मिन्नव पात जाए अष्टपदी। दस बस बुले पाछा पावा एक बास कार बिखोट पावा। एक पीना दे दास पीहर रहे तो मुड़ा को कहाँ करे। जिस ठाकुर सो नाही चारा ताको कीजा सत नमस्कारा। ताका मन लागा प्रभु मीठा सर्व सूताऊ मन उठा। जे जन अपना हुक्म नाया सर्व तोक नानक तिन पाया। अगांत शाप नींद रास खात पीत परत अनंत उलास। अपनी मान कशबार शाले अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवै बार उसका विश्वास ना होवै। जिसकी वास्त तिस आगे राख प्रभ की आज्ञा मान माथ है। उससे चौगुन करै निहाल नानक साहब सदा दयाल। अनक भांत माया के थर प्रभु चन अनेत। बिरकी छाय सो रंग लावै ओ बिनसै ओ मन पछतावै। जो दिशा सो चालन हार लपट रहो ते अंधधार। बटाऊ सो जो लावै ने ताको हाथ ना वह के। मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन धन तम सुभाया मिथ्या मैं ममता माया। मिथ्या राज उवंतन महाल मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती असु वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता। मिथ्या त्रोह मोह महान मिथ्या कर्तमान अस्थिर भक्त सत की शरण। नानक जब जब जीव है हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन मिथ्या हस्त पर दर कोहिर। मिथ्या नेत्र पेख पर त्रया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ भावै। मिथ्या तन नहीं पर पुकारा मिथ्या बास रेत पुकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पए सबल दे नानक हर हर नाम लय। बिरथी साख की आर जा सत बिना कहो सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध मुख अवता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रण ब्रथ बहाय मेघ बिना जो खेती जाए। गोविंद भजन बिन ब्रथे सब काम ज्यों कृपन के नरसाम। तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाम नानक तक बल बल जाऊं। रैत अवर कश अवर कुमावत मानी प्रीत मुखों गंढ लावत। जन हार प्रभु प्रवीन बार पीक रंकाहू भीन। अवर उपदेश है आप न कर है आप तो जावत जन्म अमराय। जिसका अंतर बसा नंका तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उनजन चरण प्रात। करो बेनती पारव सुजान अपना किया आपे मान। आपे आप कर तमेरा किसा दूर जनाव किसा बुझात नेरा। पाप श्याम सकल तेरा सब कुछ जाने आत्म की रह। जिस पावा तिसले लड़दा आए धन तुरंत रह समाए। सो सेवक जिस कृपा करी नेम नेम चप नानक हरी। सलोक
काम क्रोध रोमो विरसाय हमेव नान प्रश्नाती कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मरमाए जय प्रसाद सुगंध तन लावाए तिसको सिमरत परमगत पावाए जय प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद गृह संघ सुख बसना आठ पैर सिमरुत रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यागन जोग जय प्रसाद पाठ प्रण जय प्रसाद पाठ टंबर हंडावा तिसे त्याग कतवावा जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस का बीजय जय प्रसाद सब को माना है मुक्ता को जस रस मुखाना जय प्रसाद तुर रहता तर मन सद त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जाप तरगा मान पावा नानक फसे ती कर जावे जय प्रसाद अरो कंचन देही लिव लावत श्राम स्नेही जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगर छिद्र टाके मन शरणी पर ठाक प्रभु ताके जय प्रसाद तुझको न पहुंचे मन साथ साथ सिमरु प्रभु उच्चे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भक्त करे जय प्रसाद भूखन पैरी जय मन ते सिमरत क्यों की जय जय प्रसाद आसवारी मन प्रभु को कबु न बिसारी जय प्रसाद बाख मिलक तना राग प्रोय प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनाई ऊट पैठ सत से त्याई तिसे त्याय जो एक लख है यहाँ नानक तेरी रख है जय प्रसाद करें पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसके ध्यान जय प्रसाद तु आचार बिहारी तिस प्रभु को साह चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमर सदानूप जय प्रसाद तेरी नीकी जा सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पात्र है गुरु प्रसाद नानक जास का है जय प्रसाद सुने करना जय प्रसाद पेखे मिसमा जय प्रसाद बोले अमृत रसा जय प्रसाद सुख जय बसना जय प्रसाद हस्कर चलाए जय प्रसाद संपूर्ण फलाए जय प्रसाद परमगत पावें जय प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभु त्याग और कतलागो गुरु प्रसाद नानक मान जागो जय प्रसाद तुम प्रकट संसार इस प्रभु को मूल अमन अनुसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मरमूढ़ तू ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साथ रे मन मेरे तू ता स्वराज जय प्रसाद सबकी कथ होय नांग जाप जपै जब सोए आप जपाए जपै सुनाओ आप गाए सुहर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हो प्रकाश प्रभु दया ते कमल प्रकाश प्रभु सुप्रसन्न बसमन सोय प्रभु दया ते मात उत्तम होय सर्वविधान प्रभु तेरी माया आपो कछु न कृहु लया जे जित लावो तित लगे हरनाथ नानक इनके कछु न हाथ सलोक अंगात पार्वन सोय जो जो का सुमुक्ता होय सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध का संग मुख उजर हो साध संग मन सगली खो साध संग मट महान साध का संग प्रकट सुज्ञान साध का संग बुझा प्रम नीरा साध संग सब उतन मेरा साध का संग पाए नाम रतन साध का संग एक उप जतन साध की वरना कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रम ऐसवानी साध का संग गोचर मिला साध का संग सदा प्रफुल साध का संग अवय बस पांचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संगो सब की रेन साध का संग मनोर मैन सब का संग साध का संग न कथुता वै साध संग अस्थित मन पावे साध का संग माते पेन साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न साध संग दुष्ण समीत साधु संग मापनी साध संग किसी नहीं बह साध संग नींगा पैर साधक संग नाई को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग नाई हाँ ताप साधक संत जा सवाप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु भरे आई साधक संग न कबूता वै साधक संग सदा सोख पावै साध संग बस उचल है साधु का संग अजार सहाय साधक संग बसा थान ऊंचा है साधु के संग महल पहुंचा है साधक संग दृढ़ सावतारम साधक संग के पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु का कुर्बान साध का संग सब को उदारा साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु का संग सोतन पावे है जिस तन ते सब को बरसावे साध संग तर्म रह करे सेवा साध का संग शुभ वासुर देवा साधु का संग पापलायन साध संग अमृत गुण गायन साध का संग सर्वथान गाम नानक साध का संग सफल जनाम साध का संग नहीं कछ काल दर्शन भेद हो निहाल साध का संग क्रूख थर साध का संग नारक पर हर साध का संग यहाँ वहाँ सोहिला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावा है साधक संग निर्थ जावे पार्वन साध रिस नाक कुदर साध सुन रस है साध का संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुण गाओ साध का संग न मनते विसर साध संग सर पर निस्तर है साधक संग प्रभु मीठा साधु के संग काढ़ कर डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पै हमारी साधक संग मिटे सरोग नाक साध पेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाना जेता सुने ते तब खाना साध की उपमा त्यो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नहीं अंत साध की शोभा सदा बे अंत साध की शोभा ऊंचे ऊंची साध की शोभा ऊंचे ऊंची साध की

अष्टपदी ब्रह्म गणेश लेप जैसे जल में कमल लेप ब्रह्म गणेश निर्दोख जैसे सूर सर्व का शोक ब्रह्म गणी के दृढ़ समान जैसे राज रंको लगा तुल्पवान ब्रह्म गणी का तीर एक जम बसा को खोदा को चंदन लेप ब्रह्म गणी का अगुनाव नानक ज्यो पाव का सहसभाव ब्रह्म गणी निर्मति निर्मला जैसे मैण लागत जला ब्रह्म गणी के मनोहर प्रकाश जैसे तारे ऊपर आकाश ब्रह्म गणी के मित्र सत्समान ब्रह्म गणी का नायमान ब्रह्म गणी एक उप्रयास ब्रह्म गणी का निर्मल से निर्मला जैसे मैण लागत जला ब्रह्म गणी का मनोहर प्रकाश जैसे तारे ऊपर आकाश ब्रह्म गणी के मित्र सत्समान ब्रह्म गणी का नायमान ब्रह्म गणी ऊंचे उच्चा मन सप्ति नीचा ब्रह्म गणी सेजन पाए नानक जिन आप करें ब्रह्म गणी सुर की रीना आतुरस ब्रह्म गणी चीना ब्रह्म गणी की सब उपमया ब्रह्म गणी तिकाश बुराना पया ब्रह्म गणी सद समदर्शी ब्रह्म गणी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म गणी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म गणी की निम्न जुगता ब्रह्म गणी का पोजन ज्ञान नानक ब्रह्म गणी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म गणी एक उपरास ब्रह्म गणी का नई विनाश ब्रह्म गणी का गरीबी स्मा ब्रह्म गणी पर्व करमाहा ब्रह्म गणी का नई तंदा ब्रह्म गणी लताहुत बंदा ब्रह्म गणी का उसफला ब्रह्म गणी स्फल फल ब्रह्म गणी संग संग उदार नानक ब्रह्म गणी जब सगल संसार ब्रह्म गणी का एक रंग ब्रह्म गणी के बस प्रभ संग ब्रह्म गणी का नाम आधार ब्रह्म गणी का नाम प्रवार ब्रह्म गणी सद सजागत ब्रह्म गणी अहम त्यागत ब्रह्म गणी के मन परमानंद ब्रह्म गणी के घर सदानंद ब्रह्म गणी सुख सैन वास नानक ब्रह्म गणी का नई विनाश ब्रह्म गणी ब्रह्म का बीता ब्रह्म गणी संहिता ब्रह्म गणी का उचिंत ब्रह्म गणी का निर्मात ब्रह्म गणी कर प्रभाव ब्रह्म गणी का बड़ प्रताप ब्रह्म गणी का दर्श बड़ भागी पाई ब्रह्म गणी को बल बल जाइए ब्रह्म गणी को खोजा महेश्वर नानक ब्रह्म गणी आप परमेश्वर ब्रह्म गणी की कीमत ना ब्रह्म गणी के सकल मन माए ब्रह्म गणी का कौन जाना पेत ब्रह्म गणी का सदादेश ब्रह्म गणी का कथे न जाए आखिर ब्रह्म गणी सर्व कठा करो ब्रह्म गणी की मित कौन खाना ब्रह्म गणी की गात ब्रह्म गणी जाना ब्रह्म गणी का अंतर पार नानक ब्रह्म गणी को सदा नमस्कार ब्रह्म गणी सब सृष्टि का करता ब्रह्म गणी सजीव नहीं मरता ब्रह्म गणी मुक्त जी का दाता ब्रह्म गणी पूर्ण पुरुष दाता ब्रह्म गणी नाथ का नाथ ब्रह्म गणी का सब उपराध ब्रह्म गणी का सगल आकार ब्रह्म गणी आप निरंकार ब्रह्म गणी की शोभा ब्रह्म गणी बनी नानक ब्रह्म गणी सर्व का तनी श्लोक और तारा जो अंतर नाम सर मैं पीख है भगवान निम प्रेम ठाकुर नमस्कार नानको पर सगल तारा अष्टपदी मिथ्या नाई रसना परस मन प्रीत रंजन दर्श पर रूपना पिख नेत्र सात की टहल संत संघेत करना सुना काऊ की निंदा सत्य जाना आपको मंदा गुरु प्रसाद बिखा पर हरा मन की बाशना मन ते टराय इंद्री जेत पांच दोग तेरा है नान कोट मदे को ऐसा परस वैष्णो सो जिस ऊपर सु प्रसान बिंस की माया ते हुए पहन कर्म करता हुए न कर्म तिस वैष्णो का निर्म कर्म काहू फल की इच्छा नहीं बादशाह है कि भगत कीर्तन संग्राच है मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब रूप होप कृपाल आप दृढ़ है अवरा नाम पावे नानक वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सकल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन सकला परम कर पूजा सकल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खो है तुस भगवती की मत उत्तम हो है भगवंत की टहल करे नितनीत मंत्रा पै विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय वसावा है नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोध है राम नाम आत्म शोध है राम नाम सारस पीव है उस पंडित का उपदेश जाग जीव है हर की कथा हृदय वसावा है सो पंडित फिर जो नावा है वेद प्राण समृत बूझे वेद प्राण समृत बूझे मूल सुख मैं जाना स्थूल चौ वर्णा को देव देश नानक पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वर्णा मैं जप को नाम जो जो जपै तसी गत हो सा संग पावे जन कोई कर कृपा तुर उतारा है पस प्रेत मुक्त पाथर को उतारा है सर्व का उक्त नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जोगत कितना पाइये धर्म नानक तिस मिला है जिसका तोर कर्म जिसका मन पार का निवास जिसका नाम सत राम दास आत्म राम तस्निया दास संत पाए तन पाया सदा निकट हर जहां सो दास दरगा प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सोजी पर सगल संगत मुदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्मितावे जीव मुख सुखावे तैसा हरक तैसा सोग सदानंत नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा अमृत तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा मान तैसा रंग तैसा राजान जो व्रताय साई जोगत नानक उपर किया जीवन मुक्त पार भन के सलेठाओ जे चुका रख तैसा तिनाओ आपे कण क्राउन जोग प्रभ पावे सोई भन हो पसरो आप हो अंत तरंग लखे न जाए पार भन के रंग
जैसी माते तैसा प्रकाश पार्वम करता उनास सदा सदा सदा दया सिमर सिमर नानक पय निहा सलोक उस करायन एक जानो अंतरा परावार नानक रचना प्रवृति भव भेद अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट हो पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट भान प्रमेय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट पीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तारा कई कोट कका विचार है कई कोट नवत नावते आवे नानक करते कांत न पावे कई कोट पय मानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभेग आत्म निकोर कई कोट पर धर्म को रहा कई कोट पर दुख न कर कई कोट माया आश्रम आए कई कोट प्रदेश प्रमाए जिस जित लावो तित लकराम नान करते की जना करता रचना कई कोट सेत जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट प्राणी बाय संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशि सुन खतर कई कोट देवदान इंद्र से शत्र सगल समग्री अपने सुतारा नान जिस पावे तिस तिस निस्तारा कई कोट राजस्थान साध कई कोट बे प्राण सिमरत साध कई कोट की रतन समोन कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चिरजीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख है किन पसाच कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगाच सब ते निरह सब ते दूर नान का त्रया प्रपूर कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक सुख निवासी कई कोट जन्म जीव अमर कई कोट वो जो नहीं फिर कई कोट बैठ दी खाए कई कोट काले थाक पाए कई कोट किए तहनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पणा तत राखे नानक प्रभु कह हाथे कई कोट पै बैरागी राम नाम संकतिन लेव लागी कई कोट प्रभु कहो को जनते आत्म में पार बनते कई कोट दर्शन तो प्यास तिनको मिले प्रभु नाश कई कोट मांगा सात संग पार बन तिन लागा रंग जिन कहो आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा तहन तहन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आस ब्रह्मंड कई कोट हो अवतार कई ज्योति नो बसार कई बार पसरो पसार सदा सदा एक ओंकार कई कोट की ने बहुत प्रभते हुए प्रमा समात ताकांत न जाना कोई आपे आप नाक प्रसोए कई कोट पार्वम के दास तिन होत आत्म प्रगास कई कोट तात के बेते सनहारा एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै और पै सदी जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सह समावै अपने जन को साथ साथ समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभु एक है दूसरा नाई को नानक बिलहारण जल त्रमय सोय अष्टपदी करण क्राम करना जो ज्योत पावे सोई हो खिर में था अपनहारा अंत नहीं परावारा हुक्मे तार अतर हवा हुक्मे उजा हुक्म पावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक समय रह समाई प्रभु पावे मनुखत पावे प्रभु पावे तब पात्र त्रावे प्रभु पावे इंसा तिराक है प्रभु पावे ता हर गुण पाख है प्रभु पावे तब पात्र उदार है आप करे अपन विचार है दोस रहे का आप स्वामी के लैब संतर जामी जो पावा सुकार करावा नान दृष्टि अवरनावै कहो मानुख ते क्या होयावै ज्योत पावा सोई करावै इसके हाथ होय तां सब छले ज्योत पावा सोई करे अनजान भिख्या में रचा जे जान अपना आप बचाए भर में पूला दसतावै निमय चार कुंड फिरयावै करक पै जिस पुनि भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिनमा नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवा जाका दृष्ट कछु नावै तिस तत्काल दैत प्रगटावै जाको अपनी करा बख्शीश ताका लेखन ग्रह जगदीश यो पिण सब तिसकी रास खड़खड़ पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बन त्या बनाई नानक जीवा देख उड़ाई इसका बल ना ही जात करण क्राम सर को नाथ आज्ञाकारी बपराजियो जो तिस पावा सोही फुनतियो कबू ऊंच नीच में बसा कबू सोग हर खरंग हस कबू निंचिन व्यवहार कबू उपकाश पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावनहार कबू नृत कर पांत कबू सोई रह दिन रात कबू महा क्रोध विकाल कबू सर्व की हो त्रवाल कबू होए बबड़ राजा कबू पिखारी नीच का साजा कबू अब कीर्त में आवे कबू भला भला कहावे ज्यो प्रभु राखे ते वीरा है गुरु प्रसाद नानक साच कहे कबू होए पंडित करे बख्यान कबू मुंह धारी लावे ध्यान कबू धरती स्नान कबू सिद्ध साधक मोह ज्ञान कबू कीट हस्त तंग होए जिया अंग जून परमा प्रमैया नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे ज्यो प्रभु पावे त्यों नचावे ज्योत पावे सोई होए नानक दूजा वर न कोए कबू साध संगते पावे उस स्थान ते बौर न आवे अंतर हो ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश नाम मंत्र नाम रतेक रंग सदा बसै पार्वम के संग ज्यों जल में जल आय खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु का सत कुरबान सलोक सुखी बसा मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राजमान सो नरक पाती हो स्वान जो जना मैं जो मन सो बेष्टा का जंत
आपस को करमंत खावा जन्म रबो जोन प्रमावै धन पूंका जो करा गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावा नानक इहां मुक्त आगा सुख पावै धनवंता होई कर कृपावै त्रिण समान का संग्रह जावै बो लश्कर मानक उपर करे आस पर भीतरता का होई विनाश सब ते आप जाना बलवंत खिरमा होई जाए पशमंत किसे ने बताया अहंकारी धर्म राय तस्करे खुआरी गुरु प्रसाद जा का मिटे महान सूजन नानक दरगाह प्रवान कोट कर्म कराए हों तारे श्रम पावै सकले बिरथारे अनंत तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिर अवतार अनंत जतन करे आत्म इंद्र वै हर तरग को कैसे गवै आपको जो भला कहवै तुझे भलाई नित पावै सर्व की रेन जा का मन होय कौन अनंता की निर्मल सोय जब लग जाना मुझते काश होय तब इसको सुख नाही कोय जावे जाना मैं किस करता तब लग घर जो मैं फिरता जब तरह को बैरी मी तब लग नेचल नाही चीज जब लग मोह मगन संग लाए तब लग जब लोग मोह मगन संग माए तब लोग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटा है गुर प्रसाद नानक हों छूटा है सहस खट्टे लाखो उठतावे तृप्त ना है माया पाछा पावे अनक भोग बिखा के करा है न तृप्तावे खाप खाप मरा बिना संतोख नहीं को राजा सुपन मनो प्रथे समका जाए नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण क्रावण आपे आप सदा सरान खार जाप करण क्रावण करना है हर इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभु सोए जो कुछ कीनो सपना रंग सब ते दूर सब उनका संग बूझा देखा करावे एक आपे एक आपे अनेक मरा ना बिरसा आवे ना जाए नानक साध ही रह समाए आप देशा समझे आप फिर जाए सबका साथ आप कीनो अपने विस्तार सब कष्टा ओ करना है हर उसे पेन को कुछ होए धन तंत्र एक का सोए अपने चलता आप करना है हर कौत करा रंग अपार मन में आप मन प्रेम आए नानक की कहना जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने मुखियानी सच सच सत सब कीना कोट मधे किने बेला चीना भला भला भला त्रा रूप अस सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल त्रिवाणी घट घट सुनी श्रवण मुखियानी

कदी संत का दुगुन आर जा कटा, संत का दुगुन जमते नहीं छुटा, संत का दुगुन सुख समझाए, संत का दुख नरक में पाए, संत का दुखन मत होए मलीन, संत का दुगुन सोबातेहीन, संत के हते को रखन कोई, संत का दुगुन थान पट होए, संत कृपाल कृपा जो कर नानक संत संग निंदक पीतर है, संत के दुखन ते मुख पवे, संत का दुख कागजन लवे, संत का दुखन सर्व जोन पाए, संत का दुखन त्रिग जोन क्रमाए, संत का दुखन तृष्णा में जला, संतन का दुखन तृष्णा में जला, संत का दुखन सब को चला, संत का दुखन तेज सब जाए, संत का दुखन नीच निचाए, संत दुखी कथाओं को नाए, नानक संत पावे तो ये पीकत पाए, संत का निंद माता आई, संत का निंद घंटिक न पाई, संत का निंद माते आरा, संत का निंद परमेश्वर मारा, संत का निंद राजतेहीन, संत का निंद दुखी अरदीन, संत के निंद को सर्व रोग, संत के निंद को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दोग, नानक संत पावे ता उसका भी हो मोख, संत का दुखी सदा पवेतो, संत का दुखी किसा का नहीं मेतो, संत के दुखी को डान लागा, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी मांकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म मरा, संत की दुख न सुख ते टर, संत के दुखी को नाई ढान, अंक संत पावे तले मिलाए, संत का दुखी आद भी ते टूटा, संत का दुखी कदे काजना पहुंचा, संत के दुखी को उद्यान प्रमाया, संत का दुखी उजड़ पाई है,

प्रवेका तब चित्र गौत किस पूछ लेखा जब नाथ रंजन गोचर गा दे तब कौन छुटे कौन मंदन वादे आपने आप ये चर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पद होता तब मिल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कौ मान कौन विमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लग कहो गीस जय जो स्वरूपी जो संग समावा तक सह पू कमल तृप्तावे कर्ण क्रम करण हर नान करते कनाय शुमार जब अपनी शोभा अपने संग बनाई तब कौन माय बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला पे प्रवीण तब एक देव कहाँ कुचीन जब आपन आप उतारा तो शगन अब शगन कहाँ विचार है जब अपन ऊंचा अपन अपने रहा तब कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा विस्म विस्म रहे विस्माद नानक अपनी कर जानो आप जय छल छेद उपेश माया हुआ किसे व्याप्त माया आपको अपयादेश त्यो गुण का नहीं प्रवेश जय एका एक एक भगवंता तय कौन चिंत किस लागा चिंता जय अपन आप तियारा तय कौन कथा कौन सुने हारा भव बेअंत ऊंचे ऊंचा नान आपको आपे पहुंचा जय आप रचियो प्रपंच कार त्यो गुण मैं कीनो विस्तार पाप पुण्यता पै कहा को नारक को स्वर्ग बंशावत आर जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पैपार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपज्ञान अपन घेर आप कर देखा है खेल संकोचा तो नानक एक है जय अवगत भगत है आप जय पसरा पसार संत प्रताप धूम पाका पे तनी उनकी सुबह हूं बनी आपे कौत करे अनचोज आपे रसपोक निर्जोज जिस पावे सपना लावे जिस पावे इसके खिलावे बेश मार था गंत तोला ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोला श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानक एको पसरिया दूजा कहे दृष्टा राष्ट्रपति आप कथा आप सुनना हार आप एक आविस्तार जंत पावे तन सृट पाए अपना पाण लय समाई तुम ते पे नहीं किछो अपन सू सब जग प्रो जाको प्रभु जी आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेता नानक सब सृष्टि का जेता जी जंत सप्ता कहा दीन दयाल नाथ को ना जिसरा कथ को न मारा सो मुआ जिसमनो सारा तिस्ता जबर कहो को जाए सबसे एक निरंजन आए जी की जो चा कह सवाद अंतर भार जानो साथ गुण दान बेअंत पार नानक दास सदा बलहार पूर्ण पूरे दयाल सब भूत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाला जीवन बपान जो जो रच सुत सत्या जिस पावे तिसले मनाए भक्त करें हर के गुण गाए माने अंतर विश्वास कर माने करण हर नानक एक जाने जन लगा हरे कहना आए तिसकी आसन वृत्ति जाए सेव को सेवा अपने आई हुकुम बूझ परम पद पाई इससे ऊपर नहीं विचार जाकर मन बसे अहंकार बंधन तोर पय निर्वार अंतर बूझा गुर के पैर ये लोक सुखी है प्रलोक सुहेले नानक आपे मेले सात संग में करो नंद गुण गा पवनानंद राम नाम तो करो विचार धर्म देगा करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तन काय सुहाओ आठ पै पेखो नेरा मिटा ज्ञान बिन सह देरा सुन उपदेश हृदय सावो मन इच्छे नानक फल पावो हल पल दो राम नाम अंतर उदार पूरे गुरु की पूरी दीखिया जिस मन बसा ते साज परीखिया मन तन नाम जो बोले लाए दुख तर मन ते पहुंचाए सब जो पार करो व्यापारी दुर्गा ने बखे तुम्हारी एक का टेक रखो मन माए तन बोर आवा जाए तिस्ते दूर कहाँ को जाए उबरा रखना अर त्याय निरपो जपा सकल पो मिटाए प्रभु कृपा दे प्राणी छोटा है जिस प्रभु रखा तिसना ही दू नाम जपत मन हो सुख चिंता जाए मिटे अहंकार ते जन को कोई ना पोचन हार सिर उपर ठंडा गुर सूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी हम जाकी देठ दर्शन बेग तुत श्रेठ चरण कमल जाके रूप सब दर्शन सुंदर आरूप धन सेवा से कुर्बान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसा सोत नाल ताका निकटा उत्काल अमर पहे अमर पद पाया सत संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर बना हर कृपा दे संत पेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंत प्रभु रीठा ना प्रभु गुलागा मीठा सकल सुमिरी एक कटमाए अनकरंग नाना दृष्टाए नौ अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन सुमर अनंत नाथ करना जाय चर समाद तिन देखा सा दिखाए ना तिजन सो जी पाए सो अंत सो बार अनंत कटकट व्यापर भगवंत तरण माया काश पयाल सरलोक पून पतपाल बंत तिन पर्वत है पारवम जैसी आज्ञा तैसा कारम पौन पानी बैसंत्र माए चार कुंड तिस समाए तिसते पे नहीं कोटाओ गुरप्रसाद नानक सुपाओ बे प्राण सिंह मैं देख ससी सूर निखत्र मैं एक पानी प्रभु की सबको ओला है आप डोल कम डोल है सर्व करा कर खेला खेल मोह न पाई गुणा मोल सर्व ज्योत में जाकी जो तारे हो समय उत्पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिरमय विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुन शोभ भजन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तस्वीर है सत पंच साधु सब कह जो जो ऐसो सुखमान है कर्ण कराण हर प्रभु जान है अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन

अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार्वम ने कर पेख सास सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चेंद आसने त्यागो त्रंग सांजना की तूर मन मांग आ छोड़ बेनती करो सासंग अग्न सागर तरो हर तन के पर लो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहजानंद सासंग भज परमानंद नरक नार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चिचित्व नारायण एक एक रूप जागे रंग ने गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिम नाम बारंबार नानक जी का है उधार ओ तुम श्लोक साध के बचन अमली काले रत्न सुन कुमार हो तुधार आप त्रालोकन स्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कर मन लगा रंग जय जय शब्द नाद वाजे सुन सुन अंत करे प्रभु आ जाए प्रगटे गोपाल महात कमाते नानक उदय तिन कै साथे शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभाव मिलाए मिट गए भय भय सबरेन अमृत नाम साह संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव आल जाल बिकार तरहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक निविखे भुमारी प्रभु की उस करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमी सहज गोविंद गुरु नाम जिस मन वस सोत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रकट सम लोए सब ते उच्च पाए स्थान भव न होए अवन जान हर तन खाट

0: काल अष्टपदी
1: रमैया के गुण चेत पराने
0: कवन मूल ते कवन दृष्टाने
1: जिन तू सासवार सिगारिया
0: गर्भ गन मैं जिने उबारे
1: बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध
0: पर जोवन भोजन सुख सूद
1: व्यर्थ पयाउ प्रसाख सैन
0: मुख पयाउ बैठको दैन
1: एहो निर्गुण गुण कछु न बुझे
0: बख्श लयो तो नानक सीजे
1: जे प्रसाद तार ऊपर सुख बसे
0: सुत प्रात मीत बनता संग हसे
1: जे प्रसाद पीवे शीतल जला
0: सुखदाई पवन पावक अमूला
1: जे प्रसाद भोगे सब रसा
0: मगरी संग साथ बसा
1: दीने हस्त पांव करन नेत्र रचना
0: तिसे त्याग अवर संग रचना
1: ऐसे दोख मूड अंत व्यापे
0: नानक काड ले हो प्रवे आपे
1: आद अंत जो रखन हार
0: तेस्यो प्रीत न करे गवार
1: जाकी सेवा नम निद पावे
0: तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे
1: जो ठाकुर सद सदा हजूरे
0: ताको अंधा जानत दूरे
1: जाकी टहल पावे दरगा मान
0: तिसे बसारे मुग्ध अजान
1: सदा सदा हो पूलन हार
0: नानक राखन हारे अपार
1: रतन त्याग कौडी संग रचे
0: साच छोड़ झूठ संग मचे
1: जो छड़ना सो अस्थिर करमाने
0: जो होवन सो दूर पराने
1: छोड़ जाए तिसका श्रम करे
0: संग सहाई तिस पर हरे
1: चंदन ले तारे तोए
0: गर्द प्रीत पसम संग होए
1: अंधकूप में पतित विकराल
0: नानक काड ले हो प्रभ दयाल
1: करतूत पशु की मानस जात
0: लोक पचारा करे दिन रात
1: बाहर भेख अंतर मल माया
0: शख्स नाहे कश करे छिपाया
1: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
0: अंतर व्यापै लोभ स्वान
1: अंतर अगन भार तन स्वाहा
0: गर पाथर कैसे तरह था
1: बसे प्रभा
0: नानक तेजन सहज समात
2: कैसे मार्ग पावे
0: कर गए ले हो ओढ़ निभा
2: तो
0: समझे पूरा
2: विष्ण पर गावे गुंग
0: जतन करे तो पी सुर भंग
2: पिंगल पर भरत पर पवन
0: नहीं होत उहा उस गवन
2: तार करना मैं दीन बेनती करे
0: नानक तुमरी कृपा तरे
2: संग सहाई सावे न चीत
0: जो बहराई ता स्यो प्रीत
2: बलवा के ग्रह पितर बसे
0: अंध केल माया रंग रस
2: दिल कर माने मने प्रति
0: काल न आवे मूड़े चीत
2: बैर काम क्रोध मोह
0: झूठ बेकार महा लोभ
2: त्रोह जुगत बिहाने कई जन्म
0: नानक राख ले हो अपन कर कर्म
2: तू ठाकुर तुम पे अरदास
0: जियो पिंड सब तेरी रास
2: तुम मात पिता हम बालक तेरे
0: तुमरी कृपा में सुख कनेरे
2: कोई न जाने तुमरा अंत
0: ऊंचे ते ऊंचा भगवंत
2: सगल समग्री तुमरा सूत्र धारी
0: तुम ते होए सुआग्या कारी
2: तुमरी गात्मी तुम ही जानी
0: नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक
2: देन हार कर छोड़ के
0: नानक न पत जाए
2: अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे
0: एक वस्त कारण बिखोट गवावे
2: एक पीना दे दस फिर ले
0: तो मूड़ा को कहा करे
2: जिस ठाकुर से नाही चारा
0: ताको कीजे सद नमस्कार
2: जाके मन लगा प्रमीठा
0: सर्व सुख ताहू मन बूठा
2: जिस दिन अपना हुकम नाया
0: सर्व थोक नानक तिन पाया
2: अगंत शाह अपनी दे रास
0: हाथ पीत बरते आनंद उलास
2: अपनी मान कसबा और साहले
0: अज्ञानी मन रोस करे
2: अपनी प्रतीत आप ही खोवे
0: और उसका विश्वास न होवे
2: जिसकी बस सागर रखे
0: प्रभु की आज्ञा माने माथे
2: उससे चौगन करे निहाल
0: नानक साहिब सदा दयाल
2: पांच माया के
0: सर पर होवत जान अनेत
2: दिल की छाया सो रंग लावे
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे
2: जो दिसे सो चालन हार
0: लपट रहे होते अंध अंधार
2: बताओ सो जो लावे ने
0: ताको हाथ न आवे के
2: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
0: कर कृपा नानक आप लय लाई
2: मिथ्या तन तन कुटम सभाया
0: मिथ्या हो मैं ममता माया
2: मिथ्या राज जवन तन माल
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल
2: मिथ्या रथ स्त्री सबस्त्रा
0: मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता
2: मिथ्या त्रोह मोह विमान
0: मिथ्या आपस ऊपर कर्त गमान
2: अस्थिर पगत सार की शरण
0: नानक जप जप जीव हर के चरण
2: मिथ्या शरण पर निंदा सुने
0: मिथ्या हस्त पर दर्भ कोहरे
2: मिथ्या नेत्र पेखत पर तैर पाद
0: मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद
2: मिथ्या चरण पर विकार को तामे
0: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
2: मिथ्या तन नहीं पर पुकारा
0: मिथ्या वास लेत बिकारा
2: बिन बुझे मिथ्या सब पहे
0: सफल दे नानक हर हर नाम लए
2: मिथ्या सागत की आर जा
0: साच बिना कह होवत सूचा
2: मिथ्या नाम बिना तन अंध
0: मुखा वता कह दुर्गंध
2: बिन सिमरन दिन रहन मिथ्या व्याए
0: मेघ बिना ज्यो खेती जाए
2: गोविंद भजन बिन मिथ्ये सब काम
0: ज्यो कृपन के निरार्थ ताम
2: धन धन ते जन जे घट वस्यो ਹਰ ਨਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ
2: ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਾ ਸਵਰ ਕਮਾਵਤ
0: ਮਾਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ
2: ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਵੀਨ
0: ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ
2: ਔਰ ਬੁਦੇ ਸਹਿ ਆਪਣਾ ਕਰਹਿ
0: ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ
2: ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ
2: ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ
0: ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ
2: ਬੇਨਤੀ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਨ
0: ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੇ ਮਨ
2: ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨਿਵੇਰਾ
0: ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ
2: ਭਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ
0: ਸਭ ਕਛ ਜਾਣੇ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ
2: ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ
0: ਥਾਂ ਥਨੰਤਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ
2: ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ
0: ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪ ਨਾਨਕ

0: सिमरत परम गत पावे
1: प्रसाद वसे सुख मंदर
0: तिसै त्याय सदा मन अंदर
1: जय प्रसाद ग्रह संसुख वसना
0: आठ पैर सिमरो तिस रसना
1: जय प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा त्याय त्यावन जोग
1: जय प्रसाद पाठ टंबर हंडावे
0: तिसै त्याग का तबर लुभावे
1: जय प्रसाद सुशेष विजय
0: मन आठ पैर ताका जस गावी
1: जय प्रसाद सबको मन
0: मुख ताको जस रसन बखाना
1: जय प्रसाद रहता धर्म
0: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
1: जी जप दरगाह मान पावे
0: नानक पद सेती घर जावे
1: जय प्रसाद रो कंचन देही
0: देव लावो तिस राम स्नेही
1: जय प्रसाद रहुला रहत
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत
1: जय प्रसाद सगल सिर ढाके
0: मन शरणी पर ठाकुर प्रभु ताके
1: जय प्रसाद तुझको न पहुंचे
0: मन सास सास सिमरो प्रभु उचे
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे
0: नानक ताकी भगत करे
1: जय प्रसाद भूखन पहरी जय
0: मन ते सिमरत के आलस की
1: जय प्रसाद सब हस्त सवारी
0: मन ते प्रभु को कबू ना बिसारी
1: जय प्रसाद बाग मिलक तना
0: रख परोए प्रभु अपने मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठ सत सह त्याई
1: तिसे त्याय जो एक लख है
0: यहाँ वहाँ नानक तेरी रख है
1: जय प्रसाद करे पुन बोधान
0: माने आठ पैर कर तिसका ध्यान
1: जय प्रसाद तू चार व्यवहारी
0: इस प्रभु को सास सास चितारी
1: जय प्रसाद तेरे सुंदर रूप
0: सो प्रभु सिमरो सदा अनूप
1: जय प्रसाद तेरी की जात
0: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात
1: जय प्रसाद तेरी पात्र है
0: गुर प्रसाद नानक जस कह
1: जय प्रसाद परम गत पावे
0: जय प्रसाद सुने कर नाद तद पेखे बिस्माद
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना
0: जय प्रसाद सुख सहज बसना
1: जय प्रसाद हस्तगत चला
0: जय प्रसाद संपूर्ण फल
1: जय प्रसाद परम गत पावे
0: जय प्रसाद सुख सहज समावे
1: ऐसा प्रत्याग और कत लागो
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो
1: जय प्रसाद तू प्रगट संसार
0: तिस प्रभु को मूल ना मनो बिसार
1: जय प्रसाद तेरा प्रताप
0: रे मन मूड तू ताको जाप
1: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे
0: सह जान मन सदा हजूरे
1: जय प्रसाद तू पावे साच
0: रे मन मेरे तू तास्यो राच
1: जय प्रसाद सब की गत होए
0: नानक जाप जपै जप सोए
1: आप जपाए जपै सोनाओ
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ
1: प्रभु कृपा ते होए प्रगास
0: प्रभु दया ते कमल बिगास
1: प्रभु सुख प्रसन्न बसै मन सोए
0: प्रभु दया ते मत उत्तम होए
1: निदान प्रभु तेरी मया
0: आपो कृष्ण कछु न किन हु लया
1: जित जित लावो तिर लगे हर नाथ
0: नानक इन कह कछु न हाथ सलोक गम गाद पार ब्रह्म सोए जो जो कहे समुक्ता होए सुनमीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी
1: साध कर संग खुजल हो
0: साध संग मल सगली खोत
1: साध कर संग मिटे अभिमान
0: साध कर संग प्रकट सुज्ञान
1: साध कर संग पूज प्रभ नेरा
0: साध संग सब होत नवेरा
1: साध कर संग पाए नाम रतन
0: साध के संग एक ऊपर जतन
1: साध की महिमा वर्ण कौन प्राणी
0: नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी
1: साध कर संग गोचर मिला
0: साध के संग सदा पर फुल
1: साध सदे संग आवे बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पहुंचा
1: साध संग होए सब की रेन
0: साध के संग मनोहर बैन
1: साध के संग न कथ तावे
0: साध संग स्थित मन पावे
1: साध के संग माया ते भिन्न
0: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन समीत
0: साधु के संग महापनीत
1: साध संग किस्यो नहीं बैर
0: साध के संग न भीगा पैर
1: साध के संग न ही कुमंदा
0: साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग न ही हो ताप
0: संगत जैसा व्याप
1: आपे जाना साध बढ़ाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: साध के संग न कबहू तावे
0: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग वस्त गोचर है
0: साधु के संग जर सह
1: साध के संग वसे स्थान उच्च है
0: साधु के संग महल पहुंचे
1: साध के संग दृढ़ सब धर्म
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निदान
0: नानक साधु के कुर्बान
1: साध के संग सब कुल उधार
0: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार
1: साधु के संग सोतन पावे
0: जिस तन सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साध के संग शोभा सुर देवा
1: साधु के संग पाप लाए
0: साध संग अमृत गुण गाए
1: साध के संग सर्व थान गम
0: नानक साध के संग सफल जनम
1: साध के संग नहीं कछ काल
0: दर्शन भेट तो होत निहाल
1: साध के संग कलुक हर
0: साध के संग नरक पर हर
1: साध के संग यहाँ वहाँ सहेला
0: साध संग बिशरत हर मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावे
0: साध के संग न व्यर्था जावे
1: पार ब्रह्म साध बसे
0: नानक उतरे साध सुन रसा
1: तारक संग सुनो हर नाओ
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: तारक संग नमनते विसरा
0: साध संग सर पर निस्तर
1: तारक संग लगे प्रमीठा
0: साधु कह संग कट कट डीठा
1: साध संग पहे अज्ञाकारी
0: साध संगत पहे हमारी
1: तारक संग मिटे सब रोग
0: नानक साध पेटे संजोग
1: साध की मैमा बेद न जाने
0: जेता सुने तेता बखियाने
1: साध की उपमा ते हुंते दूर
0: साध की उपमा रही परपूर
1: साध की शोभा का नाही अंत
0: साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा ऊते ऊची
0: साध की शोभा मूचते मूची
1: साध की शोभा साध बने आई
0: नानक साध प्रभेद न पाई श्लोक
1: मन सच्चा मुख

0: कछ बुरा न पया।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी।
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
1: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस,
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी स्वाहा,
0: ब्रह्म ज्ञानी परे उपकार वहा।
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं तंदा,
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा।
1: ब्रह्म ज्ञानी का हो सफला,
0: ब्रह्म ज्ञानी सफल फला।
1: ब्रह्म ज्ञानी संसल उदार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार।
1: ब्रह्म ज्ञानी कह के रंग,
0: ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रभ संग।
1: ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार,
0: ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सजगत,
0: ब्रह्म ज्ञानी बुद्ध त्यागत।
1: ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद,
0: ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद।
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता,
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता।
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए चिंता,
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र।
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप।
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइया,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए।
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे।
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश।
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए द्याखर,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।
1: ब्रह्म ज्ञानी की मिस कौन बखाना,
0: ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने।
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता।
1: ब्रह्म ज्ञानी मुग जुग जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता।
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ।
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार,
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार।
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी।

0: मिथ्या नाही रसना परस
1: मन में प्रीत निरंजन दर्श
0: पर त्रय रूप न पेख्या नेत्र
1: साध की टैल संत संग हेत
0: करन न सुने काहू की निंदा
1: सब ते जाने आपस को मंदा
0: गुरु प्रसाद दिखिया पर हरा
1: मन की वासना मन ते टर
0: इंद्रिय जिस पंडो ते रह
1: नानक कोट मदे को ऐसा परस
0: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
1: विसन की माया ते होए भिन्न
0: कर्म करत होए नह कर्म
1: तिस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: काहू फल की इच्छा नहीं बाचा
1: केवल भगत कीर्तन
0: संगराचर सिमरन गोपाल
1: सब ऊपर होवत कृपा
0: नाम जपावे
1: नानक हो वैष्णो परम गत पावे
0: गौती भगवंत भगत का रंग
1: सगल त्याग दुष्ट का संग
0: मन ते बिन सगला परम
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: सास संग पापा मल खोवे
1: इस भगवती की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की चहल करे नीच
1: मन तन अर्प बिसन प्रीत
0: हर के चरण हृदय बसावे
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: सो पंडित जो मन प्रबोध
1: राम नाम आत्म शुद्ध
0: राम नाम सार रस पीवे
1: नानक उस पंडित के उपदेश जग जीवे
0: हर की कथा हृदय बसावे
1: सो पंडित फिर जो न आवे
0: वेद प्राण सिमर बुझे मूल
1: सुखम मैं जाने स्थूल
0: जो वरना को देव देश
1: नानक उस पंडित को सदा आदेश
0: वीर मंत्र सर्व को ज्ञान
1: जो वरना मैं जपे कहू ना
0: जो जो जपे सिसकी गत होए
1: साध संग पावे जन कोए
0: कर कृपा अंतर उतारे
1: बस प्रेत मुक्त पाथर को उतारे
0: सर्व रोग का उखल ना
1: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
0: आहु जुगल कितन पाइये धर्म
1: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिस का मन पार ब्रह्म का निवास
1: तिसका नाम सत राम दास
0: आत्म राम तिस नदी आया
1: दास ते संतन पाए तिन पाया
0: सदा निगर निगर हर जान
1: सो दास दरगा परवान
0: अपने दास को आप कृपा करे
1: तिस दास को सब सोजी पर
0: सगल संग आत्म दास
1: ऐसी जुगत नानक राम दास
0: सब की आज्ञा आत्म हितावे
1: जीवन मुक्त सऊ कहावे सदा अनंत नहीं बेयोग
0: ऐसा स्वर्ण तैसी स्मृति
1: ऐसा अमृत तैसी बेखाटी
0: ऐसा मान तैसा मान
1: ऐसा रंग तैसा राजान
0: जो वर्ताए साई जुगत
1: नानक पुर कही है जीवन मुक्त
0: आर ब्रह्म के सगले ठाओ
1: जित जित घर रखे तैसा तिन नाओ
0: आपे करन करावन जोग
1: ब्रापा वै सोई फन होग
0: कसर आप है अनंत रंग
1: लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग
0: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
1: पार ब्रह्म करता विनाश
0: सदा सदा सदा दयाल
1: सिमर सिमर नानक पय निहाल।

0: सर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान धारण
0: कई कोट कब का बिचावे
1: कई कोट न वतन नाम ध्यावे
0: नानक करते का अंत न पावे
1: कई कोट सिज्जत योगी
0: कई कोट पय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी
1: कई कोट कृपण कठोर
0: कई कोट अपेगातम निकोर
1: कई कोट पर दर्व को हिरण
0: कई कोट पर दुख न करे
1: कई कोट माया शर्मा है
0: कई कोट परदेश परमा है
1: जिस लाभ होते तिज लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिज्जत योगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्व पाए
0: कई कोट पाथर बिरख ने पजाए
1: कई कोट पवन पानी व संत
0: कई कोट देश भूमंडल
1: कई कोट सस्य सूर नखत्र
0: कई कोट देव दान विंदर सिर शत्र
1: सर्व समग्री अपने सूतार
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार
1: कई कोट राज साम सत
0: कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्शास्त्र
1: कई कोट किए रतन समुद्र
0: कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट किए चिर जीव
0: कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थी वे
1: कई कोट रखर किन्नर प्रसार
0: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगा
1: सब ते नेरा सब ते दूर
0: नानक आप लिप्त रहया परपूर
1: कई कोट पाताल के वासी
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म जीव मरे
0: कई कोट बहु जोनी फिरे
1: कई कोट बैठ सी खाए
0: कई कोट काल है थक पाए
1: कई कोट की तनवंत
0: कई कोट माया में चिंत
1: जय पाणा सह सह रख
0: नानक सब किश प्रभ कह हाथ
1: कई कोट भय वैरागी
0: कई नाम संग तिन ले बलागी
1: कई कोट प्रभ को खोजनता
0: आत्म में पार ब्रह्म लहंते
1: कई कोट दर्शन प्राप्या
0: तिनको मिलियो प्रभ अविनाश
1: कई कोट मांगे सत्संग
0: पार ब्रह्म तिन लागा रंग
1: जिनको होए आप सुप्रसन्न
0: नानक ते जन सदा तन तन
1: कई कोट खानी अर खंड
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड
1: कई कोट होए अवतार
0: कई जुगत किन्नो विस्तार
1: कई बार पस्यो पासार
0: सदा सदा एक एक अंकार
1: कई कोट किन्ने वो पांड
0: प्राप्ते हुए प्रमाय समात
1: अंत न जान कोए
0: आपे आप नानक प्रभ सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास
0: तिन होवत आत्म प्रकाश
1: कई कोट तस के बेते
0: सदा निहारे एको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीवे
0: अमर भय सद सद ही जीवे
1: कई कोट नाम गुण गावे
0: आत्म रस सुख सहज समावे
1: अपने जन को साथ साथ समारे
0: नानक ओए परमेश्वर।

0: राजमान
1: सो नरक पाती होवत स्वान
0: जो जाने में जो बलवंत
1: सोवत बिष्टा का जंत
0: आपस को करवंत कहावे
1: जन्म मरे पौ जोन परमावे
0: तन भूमिका जो करे गुमान
1: सो मूर्ख अंधा ज्ञान
0: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
1: नानक किया मुक्त आज्ञा सुख पावे
0: धनवंता होए कर दरबावे
1: तृण समान कश संग न जावे
0: वो लश्कर मानुख ऊपर करे आस
1: बल भीतर ताका होए विनाश
0: सबसे आप जाने बलवंत
1: खिन में हुए जाए
0: पसमंत आप अंकारी
1: धर्म राय तिस करे खुआरी
0: गुर प्रसाद जग का मिठे मान
1: सोजा नानक दरगाह परवान
0: कोट कर्म करे हों तारे
1: श्रम पावे सगले पिर थारे
0: अनक तपस्या करे अंकार
1: नरक स्वर्ग फिर फेरे अवतार
0: अनक जतन का रात अमली द्रव
1: हर दरगाह को कैसे गवे
0: आपस को जो भला कहावे
1: जिसे भलाई निकट न आवे
0: सर्व की रेण जग का मन होए
1: वो नानक ताकी निर्मल सोए
0: जब लग जाने उठते का छोए
1: सुख नाही कोए
0: जब जाने में किस करता
1: तबला गर्भ जोन में फिरता
0: जब तारे को बैरी मीत
1: तबलग निश्चल नाही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तबलग धर्म राय देश जाए
0: तब के पाते बंधन टूटा
1: गुर प्रसाद नानक हो छूट
0: सांस खटे ला को तावे
1: तृप्त न आवे माया पाशे पावे
0: अन भोग भिक्षा के करे
1: न तृप्त आवे खप खप मरे
0: बिना संतोष नहीं को राजा
1: सपन मनोरथ बृथे सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: भागी किसे प्राप्त होए
0: कर्ण करावन आपे आप
1: सदा सदा नानक हर जाप
0: कर्ण करावन कर्ण हार
1: इसके हाथ कहाँ विचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप आप्रभ सोए
0: जो किश किन्नो सपने रंग
1: सबते दूर सब हो के संग
0: दूजा देखा करे एक
1: आपे एक आपे अनेक
0: मरण बिन से आवे न जाए
1: नानक साध ही रहे समाए
0: आप उदेशा समझे आप
1: आपे रचिया सबके साथ
0: आप किन्नो अपन विस्तार
1: उसका
0: पिन कहो के छोए
1: थान थनंतर एक सोए
0: अपने चले ताप करने हार
1: तक करे रंग अपार
0: मन में आप मन अपने माहे
1: नानक कीमत कह न जाए
0: सच सच सच प्रभु स्वामी
1: गुर प्रसाद किने बखियानी
0: सच सच सच सब कीना
1: कोट मदे किने बिरले चीना
0: भला भला भला चर रूप
1: हाथ सुंदर अपार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल श्री वाणी
1: घट घट सुनी श्रवण बखियानी
0: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
1: नाम जपैन मानक मन प्रीत
0: सरोप
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदरण हार संत की निंदा नानक बहर बहर अवतार अष्टपदी
0: संत के दुखन आर्जा कटे
1: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
0: संत के दुखन सुख सब जाए
1: संत के दुखन नरक में पाए
0: संत के दुखन माथो इमली
1: संत के दुखन शोभा ते हीन
0: संत के हटे को रखना कोए
1: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
0: संत कृपाल कृपा जे करे
1: नानक संत संग निंदक भीतर
0: संत के दुखन ते उपवे
1: संतन के दुखन कागज
0: संतन के दुखन सर्व जोन पाए
1: संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले
1: दुखन सब को शले
0: संत के दुखन ते सब जाए
1: निमखन नीच निचाए
0: संत दुखी का थाओ को ना है
1: नानक संत पावे तावे पीगत पाए
0: संत का निंदक मात आई
1: संत का निंदक खिन टिकन ना पाई
0: संत का निंदक मात आरा
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राते ही
1: संत का निंदक दुखियार दीन
0: संत के निंदक को सर्व रोग
1: संत के निंदक को सदा बिजोग
0: संत की निंदा दोख में दोख
1: नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख
0: संत का दुखी सरा पवित्र
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित्र
0: संत के दुखी को डान लग गए
1: संत के दुखी को सब त्याग गए
0: संत का दुखी महंकारी
1: संत का दुखी सदा बेकारी
0: संत का दुखी जन्म मरे
1: संत की दुख ना सुख ते टरे
0: संत के दुखी को नाही ठाओ
1: नानक संत पावे ता लय मिलाए
0: संत का दुखी अजीत टूटे
1: संत का दुखी किते काज ना पहुंचे
0: संत के दुखी को ध्यान फरमाइए
1: संत का दुखी उजड़ पाइए
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा
1: ज्यों सास बिना मृतक की लोथा
0: संत के दुखी की जड़ किसना
1: आपन बीज आपे ही खाए
0: संत के दुखी को वर रखन हार
1: नानक संत पावे ता लय उबार
0: संत का दुखी ओम बिलाए
1: जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजा
1: जो पावक इंदन नहीं त्रापे
0: संत का दुखी छुटे केला
1: संत ਮਨ ਤਿਲ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਦੋਹਿਲਾ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਨ ਤੇ ਰਹਿਤ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ
0: ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰੀ ਪਿਆ
1: ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ
1: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈਏ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜਿਵਾਈਏ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਪੂਜੈ ਨਾਸਾ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਠ ਚੱਲੈ ਨਿਰਾਸਾ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖ ਸੰਤਿਸ਼ਟੈ ਕੋਏ
1: ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ
0: ਕੋਇਆ ਕੀਰਤਨਾ ਮਿਟੈ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ
0: ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ
1: ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ
0: ਸਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਤਿਸੈ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ
0: ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਤੈ ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ
1: ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ
0: ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ

0: नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सगल की चिंता जिस मन माहे
1: वृथा कोई ना है
0: रे मन मेरे सरा

0: अष्टपदी चरण सत सत परसन हार
1: पूजा सत
0: दर्शन सत सत पेखन हार आप सत सत सब धारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता
2: सत सत दसन
0: पूजन हार को सत सब होए सत स्वरूप हृदय जन मान्या जाके हृदय विश्वास प्रभाया कहते निरपा होए बसाना।

0: कै मन प्रतीत
1: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
0: ठाकुर को सेवक जन संग
1: सेवक नाम कै
0: सेवक को प्रपालन हर
1: सेवक की रखे निरंकार
0: सो सेवक जिस दया प्रभ धर अपने जन का पर्दा ढाक
1: सेवक की सर पर रख
0: अपने दास का दे बढ़ाई
1: सेवक को नाम
0: अपने सेवक की आप पत रख प्रभ कै सेवक को न पहुँचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक दिस प्रगटाया
0: निकी कीरी मैं कल रख
1: लश्कर कोट लख
0: जिसका शासन कार्ड त्याप मानस जतन करत भात मारे न रखे अवर न कोए काहे सोच करे रे प्राणी बारंबार बार प्रभ जपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया नाम तन नामो रूप रंग नाम रस जो जंत्र पतन उठत बैठत सोवत नाम बोलो जस जेवा दिन रात करे भगत आत्म कह चाए जो होआ होवत सो जान जिसकी महिमा कौन बखानो आठ पहर प्रभ बसे हजूरे मन मेरे तिन की ओट ले जिन जन अपना प्रभु पछाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे।

0: संतूर
1: सदा सदा प्रभु के गुण गावो चरण कमल से लागे प्रीत
2: करो प्रभु की नित नीत
1: एको टेको आधार प्रभु की दृष्ट महा सुख होए जिन चाख्या से जन त्रिपतान सपर परे प्रेम रस रंग परे शरण आन सब त्याग बड़ भागी जपया प्रभ सोए
2: नानक नाम रते सुख होए
1: सेवक की मनसा पूरी पई
2: सतगुरु ते निर्मल मत ले
1: जन को प्रभ होयो दयाल
2: सेवक कीनो सदा निहाल
1: बंधन काट मुक्त जन पया
2: जन्म मरण दुख भ्रम गया
1: इच पुन्नी सरदा सब पूरी
2: सत्संग हजूरी
1: जिसका साधन लिया मिलाए
2: नानक भक्ति नाम समाए
1: सो क्यों बिसरै जे काल न पन
2: सो क्यों बिसरै जे किया जाने
1: सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया
2: सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया
1: सो क्यों बिसरै जे अगन मैं रख है
2: प्रसाद को बिरला लख
1: सो क्यों बिसरै जे बेख ते काड है
2: जन्म जन्म का टूटा गंड
1: गुर पूरै तत है बुझाया
2: अपना नानक जन त्याया
1: साजन संत करो एहु काम
2: त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
2: जपो रे नाम जपावो
1: भगत पाए तरिए संसार
2: भक्ति तन होसी सार
1: सर्व कल्याण सुख सुख निद नाम
2: जात पाए विश्राम
1: सकल दुखा होवत नाश
2: नानक नाम जपो गुण तास
1: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ
2: मन का नियंतर ही सुहाओ
1: नेत्रों पेख दर्श सुख होए
2: मन बिकसे सा चरण धोए
1: भक्त जना कै मन तन रंग
2: बिरला को पावे संग
1: एक बस दीजे कर माया
2: प्रसाद नाम जप लया
1: ताकि उपमा कही न जाए
2: सर्व
1: प्रभ बख्शंद दीन दयाल
2: सदा कृपाल
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल
2: कटा करत प्रति

0: जब कारेहु कृष्णा दृष्टेत
1: तब कहते होता
0: जब तारी आपन सुन समाद
1: विरोध के संग कमाद
0: जब इसका भरण चेहना जापत
1: हर शोक को किसे व्यापत
0: जब आपने आप पार ब्रह्म
1: वो कहा किस होवत पर
0: आपन खेल आप वरतीजा
1: मान करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल तनी
1: बंद मुक्त को किसको गनी
0: जब कह हरे अगमा पार
1: नरक स्वरूप को कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए
1: शिव सकत को कित
0: ठाए जब आपे आप अपनी जोत तर
1: कवन डर कवन कत डर
0: आपन चरित आप करण हार
1: नानक ठाकुर अगम
0: अविनाशी सुखे आपने आसन
1: जन्म मरण को कहा बिना
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: जब गम की त्रास कहो किस होए
0: जब अवगत गोचर प्रभ एका
1: चित्र गुप्त किस पूछ लेखा
0: जब नाथ निरंजन गोचर गादे
1: कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: आपने आप ही चर्जा
1: नानक अपन रूप आप ही उपर्जा
0: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता
1: जय मिन मेल को क्या तोता
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
1: कौन को मान कौन अभिमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: किसे पूप कवन तृप्तावे
0: करण करावण करने हार
1: नानक
0: करते का नाहि समार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई
1: तब कवन माय बाप मित्र सुत पाई
0: जय सर्व कला आपे परवीन जब आपने आप और तार
1: सगन अप सगन कहा विचार
0: जय आपने ऊंचे आपने आप नेरा
1: कौन ठाकुर कौन कहिए तेरा
0: विस्मर विस्मर है विस्माद
1: अपनी गत जानो आप
0: जय शाल शेद भेद समाया
1: किसे व्यापत माया
0: आपस को आपे आदेश जय एक एक एक भगवंता
1: कौन चिंत किस लागे चिंता
0: जय आपने आप पति आ रहा
1: कौन कथे कौन सुनने
0: वो बेअंत ऊंचते ऊंचा
1: नानक आपस को अपी पूछा
0: जय आप रचियो पर पंच कार पाप पुन तय पई कहावत
1: नरक को स्वर्ग मन सावत
0: हाल जाल माया जंजाल
1: परम
0: सुख मान अपमान
1: अनेक प्रकार की बखान
0: आपन खेल आप कर देख
1: संकोच तो नानक
0: जय अवगत भगत तय आप
1: संत प्रताप
0: दोहु पाका आपे तनी
1: उनकी शोभा उन्हों बनी
0: आपे कौतक करे आनंद चोज
1: आपे रस भोगन निर्जोग
0: जिस पावे तिसे आपन नाय लावे
1: जिस पावे तिस खेल खिलावे।

0: अष्टपदी आप कथय आप सुन हार
1: जात
0: पावे ता श्रेष्ठ पाए तुम ते भिन्न नहीं किश होए जाको प्रभ जीव आप बुझाए सो समदर्शी तत का बेता
1: श्रेष्ठ का देता
0: जी जंतर सब ताके हाथ
1: दयाल नाथ को नाथ
0: जिस राखे तिस कोए न

0: अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु डीठा
1: नाम प्रभु का लगा मीठा
0: सगा समग्री एक सकट माहे
1: अनेक रंग नाना दृष्टा है
0: नौने दमरत प्रभु का नाम
1: यही मैं इसका विश्राम
0: सोन्य समाद अनहत तैनाद
1: न जाई तर्क विस्माद
0: तेन देखिया जैसे आप दिखाए
1: नानक तिस दन सो दी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत
1: कट कट व्यापृहा भगवंत
0: करण।

0: राम संग रचन
1: जिन जाता तिस किए रहत
0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख माने
0: कर्ण करावन हार प्रभ जाने
1: अंतर बसे बाहर पियो ही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: प्रभ ते सगली उत्पत
1: इस भावे ता करे बिसार
0: इस भावे ता एक अंकार
1: अनक कला लखी न जाए
0: इस भावे तिसले मिलाए
1: कवन निकट कवन कहिए दूर
0: आपे आप भरपूर
1: अंतर्गत जैसे

0: अब कै मद अलिप्त रहै
1: जो किछु कहना सो आपे कहै
0: आज्ञा आवै आज्ञा जाए
1: नानक जा पावे तलै समाए
0: इसते होए सो नाहीं बुरा
1: अरे कहो किने कछु करा
0: आप भला करतूत अत नीकी
1: आपे जाने अपने दीकी
0: आप साच धारी सब साच
1: ओत पोत अपन संग राज
0: ताकि गत मित कही न जाए
1: दूसर होए तसो जी पाए
0: किसका किया सब परवान
1: प्रसाद नानक हो जान
0: जो जाने तिस सदा सुख होए
1: आप मिलाए लय प्रभु सोए
0: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत
1: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
0: धन धन धन जन आया
1: जिस प्रसाद सब जगत तराया
0: जन आवन काय है सुआओ
1: जन के संतित आवे ना
0: आप मुक्त मुक्त करे संसार
1: नानक तिस जन को

बहुआ पे रखवाला सर्ब जिया जग जोत तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी आपे बेवाणी निरंकारी निरपौ ताड़ी लाई है खाणी बाणी तुझे समाणी जो दीसै सब आवण जाने सही शाह सच्चे वापारी सतगुर बूझ बुझाई है शब्द बुझाए सतगुर पूरा सर्ब कला साचे पर पूरा अफरियो बेपरवाह सदा तू ना तिस तिल ना तमाई है काल बेकाल भय देवाने शब्द सहज रस अंतर माने आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है आप निरालम गम गुर गम ज्ञाना जो दीसै तिस माहे समाना नानक नीच पिखिया दर जाचै मैं दीजै नाम वडाई है मारू महला पहला आपे धरती तौले आकाशंग आपे साचे गुण परगासंग जति सती संतोखी आपे आपे कार कमाई है जो करना सो कर कर विखै कोई न एटे साचे लिखै आपे करे कराए आपे आपे देवड़े आई है पंच चोर चंचल चित चल पर कर जो है कर नहीं पाल काया नगर टहै टह ढेरी बिन शब्द पत जाई हे गुर गुरते बूज त्रिभवन सूज मनसा मन मनसा मार मन स्यो लूज जो तुद सेवै से तुद ही जेहे निरपौ बाल सखाई हे आपे सुरग मछ पयाला आपे ज्योत सरूपी वाला जटा बिकट बिकराल सरूपी रूप न रेख्या कही है बेद कतेबी भेद न जाना ना तिस माता मात पिता सुत प्राता सगले सैलो पाए समाये लख न लखना जाई है कर कर थकी मीत कनेरे कोय न काटे अवगण मेरे सुर नर नाथ साहिब सबना सिर पाए मिले पौ जाई है भूले चुके मार्ग पावै आप भुलाए तो है समझावै बिन नावै मैं अवर ना दिसै नावण गत नावो गत मित पाई है गंगा जमन केल के दारा कांसी कांति पुरी द्वारा गंगा सागर बेणी संगम अठसठ अंक समाई है आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बहे अदली प्रभ आपे परम पेद पौ जाई है आपे काजी आपे मुल्ला आप भुल न कबहू भुला आपे मेहर दया पत दाता ना किसै को बैराई है जिस बख्शे तिस दे वड्याई सबसै दाता तिल ना तमाई भरपुर धार रहया न केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है क्या सा लाही अगम पार साचे सिरजन हार मुरर जिसनो नदर करै तिस मेले जिसनो नदर करै तिस मेले मेल मिलै मेल आई है ब्रह्मा विष्ण महेश द्वार उबे सेवै लख पार होर केती दर दिसै बिल लादी मैं गणत न आवै काई है साची कीरत साची बाणी होर न दिसै बेद पुराणी पूंजी साच सच्चे गुण गामा मैं तर होर न काई है जुग जुग साचा है पी होसी कौन न मुआ कौन न मरसी नानक नीच कह बेनंती दर देखो ले बलाई है मारू महला पहला दूजी दुरमत अन्नी बोड़ी काम क्रोध की कच्ची चोड़ी घर भर सहज न जाने शोहर बिन पिर नींद न पाई है अंतर अगन जले पड़कारे मनमुख तके कुंडा चारे बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाईए साचे हाथ वडाई है काम क्रोध अहंकार निवारे तस्कर पंच शब्द संगारे ज्ञान खड़गले मन स्यों लूजे मनसा मने समाई है माँ की रक्त पिता बिद तारा मूरत सूरत करया पारा जोत दात दे जेती सब तेरी तू करता सब ठाई है तुझ ही किया जम्मण मरना गुरते समझ पड़ी कै डरना तू दयाल दया कर देखै दुख दर्द शरीरों जाई है निज कर बैस रहे पौ खाया तावत राखे ठाक रहाया कमल बिगास हरे सर सोपर आत्म राम सखाई है मरण लिखाए मंडल में आए क्यों रही है चलना पर थाए सच्चा अमर सच्चे अमरापुर सो सच मिलै वडाई है
आपो पाया जगत सवाया जिन सरिया तिन धंधे लाया सच्चै ऊपर अवर न दिसे साची कीमत पाई है एथे गोए लड़ा दिन चारे खेल तमाशा तुंदू कारे बाजी खेल गए बाजी गर्ज्यो निस सुपने पखलाई है तिनको तख्त मिली वडे आई निरपो मन वस्या लिवलाई खंडी मंडी खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरई त्रिभवन ताड़ी लाई है साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साच मिलै सुख पावा साचे साचे तख्त बढ़ाई होमे गणत गवाई है गणत गणिये सहसा जी है क्यों सुख पावे दुए ती है निर्मल एक निरंजन दाता गुर पूरे ते पत पाई है जुग जुग बिरली गुरमुख जाता साचा रव रहा मन राता तिसकी ओट गई सुख पाया मन तन मैल न काई है जीव रसायन साचे राती हर प्रभ संगी पौ न प्राती श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी ज्योति ज्योत मिलाई है रख रख पैर धरो पग तरना वाहिगुरु रख रख पैर धरे पौ तरना जत कत देखो तेरी शरणा दुख सुख दे।

रे आद निरंजन खसम हमारे साचे जोग जुगत विचारी साचे ताड़ी लाई है केतड़िया जुग तुंदू कर ताड़ी लाई सिरजन हार सच नाम सच्ची बडयाई साचे तख्त बढ़ाई है सत जुग सत संतोख सरीरा सत सत वरत गैर गंभीरा सच्चा साहेब सच परख है सच सच हुक्म चलाई है सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगा साच निवासा मन हुक्म रजाई है सतगुर साच कह सब कोई सच वरत साचा सोई मन मुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है त्रित धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुविधा सूकी गुरमुख होवै सो साच बखाण मनमुख पचै वाई है मनमुख कदे न दरगा सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बादे आवै बादे जावै सोजी बूझ न काई है दया दुआपर अद्धी होई गुरमुख विरला चीनै कोई दुए पग धर्म तरे तरणी तर गुरमुख साच तथाई है राजे धर्म करै परथाए आसा बंदे दान कराए राम नाम बिन मुक्त न होई ताके कर्म कमाई है कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही मुक्त पदार्थ शब्द सलाही बिन गुर शब्द है मुक्त न होई पर पंच कर परमाई है माया ममता छोड़ी न जाई से छूटे सचकार कमाई एनस भगत रते बिचारी ठाकुर स्यों बने आई है एक जप तप कर कर तीर्थ नावै ज्यों तुद भावै तिवै चलावै हठ निग्रह अपतीज न पीजै बिन हर गुर किन पत पाई है कली काल में एक कल राखी बिन गुर पूरे किने न पाखी मनमुख कूड़ वरतै बरतारा बिन सतगुर भरम न जाई है सतगुर वे परवाह सिरंदा ना जमकान न छंदा बंदा जो तिस सेवे सो अविनाशी ना तिस काल संताई है गुरमै आप रखिया कर तारे गुरमुख कोट असंख उधारे सर्ब जिया जग जीवन दाता निरपौ मैड़ नकाई है सगले जाचै गुर भंडारी आप निरंजन लख पारी नानक साच कहे प्रभ जाचै मैं दीजै साच रजाई है मारू महला पहला साचै मेलै शब्द मिलाए जात सपाणा सहज समाए त्रे भवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पतीजै लख पेवा भगता का गुणकारी करता बख्श लए बड़े आई है देंदे तोट न आवै साचे लै लै मुकर पौंदे काचे मूल न बूजै साच न रीजै दूजै भरम भुलाई है गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लिव गुरमत जाती मनमुख सोए रहे से लूटे गुरमुख सावत पाई है कूड़े आवे कूड़े जावे कूड़े राती कूड़ कमावे शब्द मिले से दरगा पैज गुरमुख सुरत समाई है कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी ज्यो वाड़ी ओ जाड़ उजाड़ी नाम बिना किश साध न लागे हर बिसरे दुख पाई है भोजन साच मिले आगाई नाम रतन साची वडे आई चीने आप पछाण सोई ज्योति ज्योत मिलाई है नावो भुली चोटा खाए बहुत सियाण भरम न जाए पच पच मोए अचेत न चेतै अजगर भार लदाई है बिन बाद बरोद कोई ना कोई नाही मैं देखा लियो तिस सालाही मन तन अर्प मिलै जग जीवन हर स्यों बणत बनाई है प्रभ की गत मित कोय न पावै जे को वड्डा कहाए वडाई खावै साचे साहिब तोट न दाती सगली तिन्ह उपाई है वड्डी वड्याई वे परवाहे आप उपाए दान समाहे आप दयाल दूर नहीं दाता मिलया सहज रजाई है एक सोगी एक रोग ब्यापै जो किश करे सो आपे आपे भगत पाओ गुर की मत पूरी अनहद शब्द लखाई है एक नांगे भूखे पवै पवाई एक हट करै मन मरै न कीमत पाए गाते अवगत की सार न जाने बूझै शब्द कमाई है एक तीर्थ नावै अन्न न खावै एक अग्न जलावै देह खपावै राम नाम बिन मुक्त न होई कित विद पार लंघाई है गुरमत छोड़ै उजड़ जाई मनमुख राम न जपै अवाई
पच पच बूढ़ै कूड़ कमावै कूड़ काल बैराई हे हुक्मै आवै हुक्मै जावै बूझै हुक्म सो साच समावै नानक साच मिलै मन भावै गुरमुख कार कमाई हे मारू महला पहला आपे करता पुरख विधाता जिने आपे आप उपाए पछाता आपे सतगुर आपे सेवक आपे श्रेष्ठ उपाई हे आपे नेड़ै नाही दूरै बूझै गुरमुख से जन पूरे तिनकी संगत एन सलाहा गुर संगत एह वडाई हे जुग जुग संत भले प्रभ तेरे हर गुण गावै रसन रसेरे उस्तत करै पर हर दुख दालद जिन नाही चिंत पराई हे ओए जागत रहै न सूतै दी सूते दिसै संगत कुल तारे साच परिसै कल कलमल मैल नाही ते निर्मल ओए रहै भगत लिवलाई हे बूजो हर जन सतगुर बाणी ए जोवन सास है देह पुराणी आज काल मर जाइए प्राणी हर जप जप हृदय त्याई है छोडो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उच्छा हाड़ा साकत कूड़ पचै मन होमै दोहो मार्ग पचै पचाई हे छोडो निंदा तात पराई पड़ पड़ दज्जै शांत न आई मिल सतसंगत नाम सलाह हो आत्म राम सखाई हे छोडो काम क्रोध बुरियाई होमै तंद छोडो लंपटाई सतगुर शरण परो ताय उबरो इं तरियै भव जल पाई हे आगै बिमल नदी अगन बिख चेला तिथै अवर न कोई जियो अकेला पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी पड़ दज्जै मनमुख ताई हे गुर पै मुकत दान दे पावै जिन पाया सोई बिद जाणै जिन पाया तिन पूछो पाई सुख सतगुर सेव कमाई हे गुर बिन उर्ज मरै बेकारा जम सिर मारै करे खुआरा बांदे मुक्त नाही नर निंदक डूबै निंद पराई हे बोलो सच पछाणो अंदर दूर नाही देखो कर नंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी ओ भवजल पार लंघाई हे देही अंदर नाम निवासी आपे करता है विनासी ना जियो मरै न मारिया जाई कर कर देखै शब्द रजाई हे ओ निर्मल है नाही अंधियारा आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्मै आई जाई हे गुर के सेवक सतगुर प्यारे ओए बैसै तख्त सो शब्द विचारे तत् लह है अंतरगत जाने सतसंगत साच बढ़ाई हे आपे तरे जन पितरा तारे संगत मुक्त सुपार उतारे नानक तिसका लाला।

बैठा ना तद धंद पसारा हे जुग छती तिने वरताए ज्यों तिस भाणा तिवै चलाए तिसै शरीक न दिसै कोई आपे अपरे अपारा हे गुप्ते बूझै जुग च त्यारै घट घट वरतै उदर मझारे गुप्ते बूझो जुग च त्वारै घट घट वरतै उदर मझारे जुग जुग एका एकी वरतै कोई बूझै गुरबी चारा हे बिंद रक्त मिल पिंड सरिया पौन पाणी अग्नि मिल जिया आपे चोज करे रंग महली होर माया मोह पसारा हे गर्भ कुंडल मैं उर्द ध्यानी आपे जाने अंतर जामी सास सास सच नाम संभाले अंतर उदर मझारा हे चार पदार्थ लै जग आया शिव शक्ति कर वासा पाया एक बिसारे ता पिड़ हारे अंदलै

त्रिपवन सारे सुन्ने लख पार निरालम सुन्ने ताड़ी लाएंदा सुनो तरत आकाशो पाए बिन थम्मा राखे सच कल पाए त्रिपवन साज मेखली माया आपो पाए खपाएंदा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी ओत पुज चलत किया सिर करम करतै बिस्माद शब्द देखाएंदा सुनो रात दिन स दोय किए ओपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा साम वेद रिग जुजर अथर्बण ब्रह्मै मुख माया है त्रैगुण ताकी कीमत कह ना सकै को त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा सुनो सपत पताल उपाए सुनो पवन रखे लिवलाए आपे कारण किया परंपर सब तेरो किया कमाएंदा राज ताम सत कल तेरी छाया जन्म मरण होमै दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथे मुक्त कराएंदा सुनो उपजे दस अवतारा सृष्टो पाए किया पसारा देव दानव गण गंधर्व साजे सब लिखिया कर्म कमाएंदा गुरमुख समझै रोग न होई ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगै जुगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाएंदा पंच तत् सुनो परगासा दे संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा भला दोए मस्तक लिखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रते हर रस मत वाले रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए पूरे भाग मिलाएंदा इस मन माया को नेहो कनेरा को बूझे ज्ञानी करो नवेरा आसा मनसा होमै सहसा नर लोभी कूड़ कमाएंदा सतगुर ते पाए बिचारा सुन समाध सच्चे घर बारा नानक निर्मल नाद शब्द धुन सच रामै नाम समाएंदा नानक निर्मल नाद शब्द धुन सच रामै नाम समाएंदा मारू महला पहला जय देखा तह दीन दयाला आए न जाई प्रभ कृपाला जिया अंदर जुगत समाई रहो निराल मराया जग तिसकी छाया तिस बाप न माया ना तिस भैण ना भ्राओ कमाया ना तिसे ओपत खपत कुल जाती ओ अजरावर मन पाया तू अकाल पुरख नाही सिर काला तू पुरख लेख गम निराला सत संतोख शब्द अत सीतल सहज पाए लिवलाया त्रै वरताए चौथे घरवासा काल बिकाल किए एक ग्रासा निर्मल जोत सर्ब जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारे हर रस माते पारे उतारे नानक रेण संत जन संगत हर गुर प्रसादी पाया तू अंतर जामी जी सब तेरे तू दाता हम सेवक तेरे अमृत नाम कृपा कर दीजै गुर ज्ञान रतन दी पाया पंच तत् मिल ए तन किया आत्म राम पाए सुख थिया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया नात सुभूख प्यास मन मानया सर्ब निरंजन कट कट जानया अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुपाया अध्यात्म कर्म करे दिन राती निर्मल ज्योत निरंतर जाती शब्द रसाल रसन रस रसना बेण रसाल बजाया बेण रसाल बजावै सोई जाकी त्रे पवन सो जी होई नानक बूजो एह बिद गुरमत हर राम नाम लिवलाया ज ऐसे जन विरले संसारे गुर शब्द विचारे रह निरारे आप तरह संगत कुल तारे तिन सफल जन्म जग आया घर दर मंदर जाने सोई जिस पूरे गुरते सोजी होई काया गढ़ महल महली प्रभ साचा सच साचा तख्त रचाया चतर दस हाट दीवे दोय साखी पंच सेवक सेवक पंच नाही बिख चाखी अंतर वस्त अनूप निर्मोलक गुर मिले हर तन पाया तख्त बह तख्त की लायक पंच समाये गुरमत पायक आदि जुगादी हैपी होसी सहसा परम चुकाया तख्त सलाम हुवै दिन राती एव साच वडाई गुरमत लिव लिव जाती नानक राम जपो तर तारी हर अंत सखाई पाया मारू महला पहला हर तन संचो रे जन पाई सतगुर सेव

0: काजा अमर अडोल अपार अमोल हर अस्थिर थान सोहाया तस कर चोर न लागे ता को धुन उपजै शब्द जगाया तू एकंकार निराल महाराजा तू आप सवार जन के काजा अमर डोल पार अमोलक हर अस्थिर थान सुहाया देही नगरी उत्तम थाना पंच लोक वसै परधाना ऊपर एकंकार निरालम सुन समाद लगाया देही नगरी नौ दरवाजे सिर सिर करण हर साजे दसमें पुरख तीत निराला आपे लख लखाया पुरख लेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो कर अपना हर आत्म राम नाम पाया सर्व निरंजन पुरख सजाना अदल करे गुर ज्ञान समाना काम क्रोध लै गर्दन मारे होमै लोभ चुकाया बसे थान वसै सच्चे थान वसै निरंकारा आप पछाण शब्द विचारा सच्चे महल निवास निरंतर आवण जान चुकाया ना मन चले ना पौने उडावै जोगी शब्द ना हदवावै पंच शब्द चुनकार निरालम प्रव आपे वाए सुनाया पौबै रागा सहज समाता होमै त्यागी अनहत राता अंजन सार निरंजन जाने सर्व निरंजन राया दुख पै भंजन प्रभ अविनासी रोग कटे काटी जम फासी नानक हर प्रभ सो पौ भंजन गुर मिले हर प्रभ पाया काले कवल निरंजन जाने बूझे कर्म से शब्द पछाणे आपे जाने आप पछाणे सब तिसका चोज सवाया आपे शाह आपे वणजारा आपे परखे परखण हारा आपे कसकस वट्टी लाए आपे कीमत पाया आप दयाल दया प्रभ धारी कट कट रव रहया बनवारी पुरख तीत बसैन केवल गुर पुरख है पुरख मिलाया प्रभ दाना बीना गर्भ गवाए दूजा मेटा एक दिखाए आसा माहे निराल मजोनिया कोल निरंजन गाया ओमै मेट शब्द सुख होई आप बिचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे घर रहना जीवत मरो भव जल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा मन जप मन हर जप पार लंघाया ओमै ममता लोभ बिनासन नौ दर मुक्ते दसवें आसन ऊपर परे परे परंपर जिने आपे आप उपाया गुरमत लेवो हर लेव तरिये कुल गाए जमते कह डरिये जात जात देखो तत तत तुम ही अवर न दुतिया गाया सच हर नाम सच है शरणा सच गुर शब्द चितै लग तरना अकथ कथै देखे अपरंपर फुन गर्भ न जोनी जाया सच बिन सत संतोख न पावे बिन गुर मुक्त न आवे जावे मूल मंत्र हर नाम रसायन कह नानक पूरा पाया सच बिन भवजल जाए न तरिया यो समुंद अथाह महा बिख भरिया रह अतीत गुरमत ले ऊपर हर निरपौ कै कर पाया झूठी जग हित की चतराई बिलम न लागे आवे जाई नाम बिसार चले अभिमानी उपजै बिनस खपाया उपजै बिनसै बंधन बंदे होमै माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जम पर बंध चलाया गुरबिन मुक्त गुरबिन मोख मुक्त क्यों पाईऐ बिन गुर राम नाम क्यों त्याईऐ गुरमत लेहो तरो भव दुत्तर मुक्त पए सुख पाया गुरमत कृष्ण गोवर्तन तारे गुरमत सायर पाहन तारे गुरमत लेहो परम पद पाईऐ नानक गुर परम चुकाया गुरमत लेहो तरो सच तारे गुरमत लेहो परम पद पाईऐ नानक गुर परम चुकाया गुरमत लेहो तरो सच तारी आत्म चीन हृदय मुरारी जमके फाहे कट हर जप कोल निरंजन पाया गुरमत पंच सखे गुर पाई गुरमत अग्न निवार समाई मन मुख नाम जपो जग जीवन हृदय अंतर लख लखाया गुरमुख बूझे शब्द पतीजै उस्तत निंदा किसकी कीजै चीनो आप जपो जग दीसर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मंड खंड सो जानो गुरमुख बूझो शब्द पछाणो ਘਟ ਘਟ ਭੋਗੇ ਭੋਗਣ ਹਾਰਾ ਰਹੇ ਅਤੀਤ ਸਵਾਇਆ। ਗੁਰਮਤ ਬੋਲੋ ਹਰ ਗੁਰਮਤ ਬੋਲੋ ਹਰ ਸੱਚ ਸੂਚਾ, ਗੁਰਮਤ ਬੋਲੋ ਹਰ ਜਸ ਸੂਚਾ, ਗੁਰਮਤ ਆਖੀ ਦੇਵੋ ਊਚਾ। ਸ਼੍ਰਵਣ ਨਾਮ ਸੁਣੈ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਾਇਆ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰ ਹਰ ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਲਭ ਲੋਭ ਤਜ ਹੋ ਨਚਿੰਤਾ, ਲਭ ਲੋਭ ਤਜ ਹੋ ਨਚਿੰਦਾ, ਭ੍ਰਮ ਕਾ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਨਿਰਾਲਾ, ਹਰ ਅੰਤਰ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਨਿਸ ਦਾਮਨ ਜਿਉ ਚਮਕ ਚੰਦਾਇਣ ਦੇਖੈ, ਐਨਸ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪੇਖੈ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਦੇਖਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੋ ਆਪੇ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੇ, ਸਸ ਕਰ ਸੂਰ ਦੀਪਕ ਗਹਿਣਾਰੇ, ਦੇਖ ਦਿਸ਼ਟ ਰਹੋ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸਭ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਉ ਜਾਏ, ਅਨਭਉ ਪਦ ਪਾਵੇ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ, ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੋਚਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ, ਅਤ ਰਸ ਮੀਠਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹਰ ਜਸ ਦੀਜੈ, ਹਰ ਜਪੀਐ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀਰਾ, ਹਰ ਜਪਤੇ ਮਨ ਤੇ ਧੀਰਾ। ਦੋ ਘਟ ਘਟ ਪਉ ਭੰਜਨ ਪਾਈਐ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨ ਜਾਇਆ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗਾ, ਹਰ ਜਸ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਾ। ਹਰ ਭਾਵੈ ਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਤਾਰੇ ਜਗਤ ਸਵਾਇਆ, ਜਿਨ ਜਪ ਜਪਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵਾਕੇ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਕਾਲ ਸੇਵਕ ਪਗ ਤਾਕੇ। ਊਤਮ ਸੰਗਤ ਗਤ ਮਿਤ ਊਤਮ, ਜਗ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਤਰਾਇਆ, ਓ ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਤਰੀਐ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਧਾ ਅੰਤਰ ਜਰੀਐ। ਪੰਚ ਬਾਣ ਲੇ ਜਮ ਕੋ ਮਾਰੈ, ਗਗਨੰਤਰ ਤਣਖ ਚੜਾਇਆ, ਸਾਕਤ ਨਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਿਉ ਪਾਈਐ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਬਿਨ ਆਈਐ ਜਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਪਰਾਇਣ, ਹਰ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਿਰਭਉ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਧੁਨ ਆਨੰਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ, ਨਿਰਭਉ ਸੋ ਸਿਰ ਨਾਹੀ ਲੇਖਾ, ਆਪ ਅਲੇਖ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਦੇਖਾ। ਆਪ ਅਤੀਤ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭੋ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤ ਸੋ ਪਾਇਆ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ। ਅੰਤਰ ਦੇਖ ਨਿਰੰਤਰ ਬੂਜੈ, ਅਨਤ ਨਾ ਮਨ ਡੋਲਾਇਆ, ਨਿਰਭਉ ਸੋ ਅਬ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ, ਐਨਸ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਰਸਿਆ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਸ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਇਆ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਰਹੇ ਅਲਿਪਤ ਚਲਤੇ ਘਰ ਆਣੈ। ਉਪਰ ਆਦ ਸਰਬ ਤਹਿ ਲੋਈ, ਸਚ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਣੈ ਹਾਰ ਪਾਰਾ, ਕੀਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਿਉ ਚਾਰਾ, ਜੀ ਉਪਾਏ ਰਿਜਕ ਦੇ ਆਪੇ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਹਿਆ ਪਰ ਭੂਰੇ, ਕਿਸ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸ ਆਖਾਂ ਦੂਰੇ। ਗੋਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਘਟ ਘਟ ਦੇਖੋ, ਵਰਤੈ ਤਾਕ ਸਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਕੋ ਮੇਲੇ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਗੋਚਰ, ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਭਰਮ ਜਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਤੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਅੰਤ ਸਖਾਈ ਚੱਲਣ ਵਾਰਾ। ਮੋਹ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਬੇਲੀ, ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਕਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰਮਤ ਸੂਰਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਰੇਵੋ, ਜਿਨ ਭੂਲਾ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਧਨ ਜਸ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮਤ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਜਾਚਕ ਸੇਵ ਕਰੇ ਦਰ ਹਰ ਕੈ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਜਸ ਗਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਗਤ ਪਤ ਪਾਏ। ਸਾਕਤ ਠੌਰ ਨਾਹੀ ਹਰ ਮੰਦਰ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੇਵੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੁੰਦ ਥਾਹਾ, ਪਾਵੋ ਨਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਲਾਹਾ। ਵਿਖਿਆ ਮਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੋ, ਗੁਰ ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਸੰਕ ਨ ਕੀਜੈ, ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਸ ਰਹੀ ਜੈ। ਸੰਸਾ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨ ਸੇਵੋ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਰੋਗ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਵਡਿਆਏ, ਕੌਣ ਸੋ ਦੂਜਾ ਤਿਸ ਸਮਝਾਏ। ਹਰ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਏਕਾ ਵਰਤੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਵਾਚੈ ਪੁਸਤਕ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨਾ, ਇਕ ਬਹਿ ਸੁਨਹਿ ਸੁਨਾਵੈ ਕਾਨਾ। अजगर कपट कहो क्यों, अजगर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुर तत न पाया। कर विभूत लगावे भस्मे, अंतर क्रोध चंडाल सोहोमे, पाखंड कीने जोग न पाइय, बिन सतगुर लख न पाया। तीरथ वर्त नेम करै उद्याना, जत सत संजम कथै ज्ञाना। राम नाम बिन क्यों सुख पाइए, बिन सतगुर परम न जाया। न्योली करम भयंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मन हाठी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सो, गुर शब्द महारस पाया। कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया। नानक आत्म राम सवाया, गुर सतगुर लख लखाया। मारू सोलहे महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
1: हुक्मी सहज सिष्ट उपाई, कर कर वेख्या अपनी वड्याई। आपे करे कराए आपे, हुक्मे रहा समाई है। माया मोह जागत गुबारा, गुरमुख बुझै को विचारा। गुरमुख माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बुझै को विचारा। आपे नदर करे सो पाए, आपे मेल मलाई है। आपे मेले दे वड्याई, गुर प्रसादी कीमत पाई। मन मुख बहुत फिरै बिल लांदी, दूजै पाए खुआई है। हमें माया विचे पाई, मन मुख भूले पत गवाई। गुरमुख होवे सो नाए राचै, साचै रहा समाई है। गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया, मनसा मार मन माहे समाया। आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है। सतगुर सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए। अंतर प्यार भगती राता, सहज मत्ते बन आई है। दुख निवारण गुर ते जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता। जिसनों लाए सोई बुझै पौ परम शरीरों जाई है। आपे गुरमुख आपे देवै, सच्चै शब्द सतगुर सेवै। जरा जम तिस जो न साकै, साचे स्यों बन आई है। तृष्णा अग्न जलै संसारा, जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू, सतगुर बूझ बुझाई है। सतगुर सेवन सेवड भागी, साचै नाम सदा लिव लागी। अंतर नाम रव्या नह केवल, तृष्णा शब्द बुझाई है। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरलै किनै पछाणी। सच्चा शब्द रते बैरागी, आवण जान रहाई है। शब्द बुझै सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसै मन आए। सतगुर अपना साध ही सेवै, होमै विचों जाई है। गुर ते बूझै तांदर सूझै, नाम विहूणा कथ कथ लूझै। सतगुर सेवे की वड्याई, तृष्णा भूख गवाई है। आपे आप मिलै तां बूझै, ज्ञान विहूणा किछु न सूझै। गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाई है। जो धुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई न मेटै धुर फरमाया। सतसंगत मैं तिन ही वासा, जिनको धुर लिख पाई है। अपनी नदर करे सो पाए, सच्चा शब्द ताड़ी चित लाए। नानक दास कह बेनंती, भिख्या नाम दर पाई है। मारू महला तीजा, एको एक वरतै सब सोई। गुरमुख विरला बूझै कोई, एको रव रहया सब अंतर। तिस बिन अवर ना कोई है। लाख चौरासी जी उपाए, ज्ञानी ध्यानी आख सुनाए। सबना रिजक समाहे, आपे कीमत होर न होई है। माया मोह अंध अंधारा, हो मैं मेरा पसरिया पा सारा। अन दिन जलत रहे दिन राती, गुर बिन शांत न होई है। आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उथापे आपे। सच्चा हुक्म सच्चा पा सारा, होरन हुक्म ना होई है। आपे लाए लए सो लागै, गुर प्रसादी जम का पौ पागै। अंतर शब्द सदा सुखदाता, गुरमुख बूझै कोई है। आपे मेले मेल मलाए, पुरब लिखिया सो मेटना ना जाए। अन दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਜਾਤਾ, ਆਪੇ ਆਏ ਮਿਲਿਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਸੁਖ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕੁਟੰਬ ਮੋਹ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਆਖੀ ਸੂਝੈ। ਅੰਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਰਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖਤਾਤ ਦੂਜੈ ਹੈ ਲਾਗਾ, ਜਨਮਤ ਕੀ ਨਾ ਮੋਹ ਅਭਾਗਾ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕੁਸੁਧ ਹੋਮੈ ਮਲ ਲਾਈ, ਜੇ ਸੌ ਧੋਵੈ ਤਾਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਖੱਪੈ ਸ਼ਬਦ ਧੋਪੈ ਤਾਂ ਹੱਛੀ ਹੋਵੈ, ਫਿਰ ਮੈਲੀ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਕਾਇਆ ਸੰਘਾਰੈ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ। ਅੰਤਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰਾ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨੈ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰਾ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨੈ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਚਾ ਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲਾਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਮਿਲਿਆ ਵਡਭਾਗੇ। ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਰਹੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਰਵੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਪੈ, ਪੂਰਾ ਸੇਵਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਝਾਪੈ। ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਚਾਖੈ ਸੱਚ ਸੋਈ ਹੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਇੱਕ ਸਵਿਨ ਹਉ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਕਿਨੈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਸੱਚਾ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਰਾਤੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦੇ ਖੋਈ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਵੈ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸਾਚੇ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਏਕੋ ਅਮਰ ਏਕਾ ਪਤ ਸਾਹੀ, ਏਕੋ ਅਮਰ ਏਕਾ ਪਤ ਸ਼ਾਹੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਿਰ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨ ਆਪ ਪਛਾਤਾ, ਆਪੇ ਆਏ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖਦਾਤਾ। ਰਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਪਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ, ਮਨਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਰਮ ਹੰਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਿਜ ਘਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਸੋਈ ਜਨ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਖ ਸੁਣਾਏ ਸੂਰਾ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਾਚਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਪਾਏ ਸਪਾਈ ਹੈ। ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਅਵਰਾਂ ਸਮਝਾਏ, ਘਰ ਜਲ ਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਪੜ ਥਾਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਫਿਰੈ ਭੇਖ ਧਾਰੀ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਨ ਮਾਰੀ। ਅੰਨ ਦਿਨ ਜਲਤ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਭਰਮ ਭੇਖ ਪਰਮਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਟੰਬ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਦਾਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਮੋਏ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ। ਅੰਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਪੈ ਭਾਏ ਭਗਤ ਚਿਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੁੱਤਾ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਭੌਂਕੈ ਜਿਸ ਕੁੱਤਾ। ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋਡੈ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪੁਛਤਾਈ ਹੈ। ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਇੱਕ ਅਹਿਨਸ ਨਾਮ ਰਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਬੂਝੈ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਭਉ ਜਾਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਇੱਕ ਮਨੁਆ ਮਾਰ ਮਨੈ ਸਿਉ ਲੂਝੈ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗੀ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਈ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਿਰਜੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਮਿਲਾਈ। ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਇਉਂ ਫੁਰਮਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ, ਮਨਮੁਖ ਸੇਵ ਨਾ ਜਾਣਨ ਕਾਚੇ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ, ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਸੇ ਵਿਛੜੈ ਨਾਹੀ, ਨਦਰੀ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਈ ਹੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਮੈਲ ਕਮਾਇਆ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਮਨ ਦੇਖੋ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਆਪੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਸੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਪਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਸਭ ਕੋ ਜਾਸੀ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਬਾਧਾ ਜੰਫਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਜਨ ਉਭਰੇ, ਸੱਚ ਸਾਚ ਸਮਾਈ ਹੈ। सतगुरु राखे सेजन उभरे साचे साच समाई है। आपे करता कर कर वेख जिसनो नदर करे सोई जन लेख गुरमुख ज्ञान ते सब किछ सूझै अज्ञानी आंद कमाई है। मनमुख सहसा बूझ न पाई मर मर जम्मै जन्म गवाई गुरमुख नाम रते सुख पाया सहजे साच समाई है। धंधा धावत मन भया मनूरा फिर होवै कंचन भेटै गुरपूरा आपे बख्श लए सुख पाए पूरा शब्द मिलाई है। दुरमत झूठी बुरी बुरियार औगणे आरी औगणे आर कच्ची मत फीका मुख बोलै दुरमत नाम ना पाई है। औगणे आरी कांत ना पावै मन की झूठी झूठ कमावै पिरका साव ना जाने मूर्ख बिन गुर बूझ ना पाई है। दुरमत खोटी खोट कमावै शिंगार करे पिर खसम ना पावै गुणवंती सदा पिर रावै सतगुर मेल मिलाई है। आपे हुक्म करे सब वेखै एक नाम बख्श ले तुर लेखै अंद नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है। होमै धात मोह रस लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई आपे मेलै आपे कर वेखै बिन सतगुर बूझ न पाई है। एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोह सोए रहे अभागे आपे करे कराए आपे होर करना किछु न जाई है। काल मार गुर शब्द निवारे हर का नाम रखै और तारे सतगुर सेवा ते सुख पाया हर का नाम समाई है। दूजै पाए फिरै देवानी माया मोह दुख माहे समानी बहुते पेख करै नह पाए बिन सतगुर सुख न पाई है। किसनो कहिए जा आप कराए जित पावे तित राह चलाए आपे मेहरवान सुखदाता जो पावे तिवें चलाई है। आपे करता आपे भूता आपे संजम आपे जुगता आपे निर्मल मेहरवान मधसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है। से वडभागी जिन एको जाता घट घट वस रहा जग जीवन दाता एक थै गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख भ्रम पौ जाई है। गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता जिस तू दे सोई जन पाए नानक नाम वडाई है। मारू महला तीजा सच सालाही गहर गंभीर सब जग है तिस ही कै चीरै सब घट भोग सब घट भोग वै सदा दिन राती आपे सुख निवासी है। सच्चा साहिब सच्ची नाई गुरप्रसादी मन वसाई आपे आए मिलिया आपे आए वसिया घट अंतर टूटी जमकी फासी है। किस सेवी तै किसा लाही सतगुर सेवी शब्द सलाही सच्चा शब्द सदा मत उत्तम अंतर कमल परगासी है। देही काची कागद मिकदारा बूंद पवै बिन सह टहत ना लागै वारा कंचन काया गुरमुख बूझै जिस अंतर नाम निवासी है। सच्चा चौंका सुरत की कारा हर नाम भोजन सच आधारा सदा तृप्त पवित्र है पावन जित घट हर नाम निवासी है। हां तिन बलिहारी जो साचा लागे हर गुण गावै अंदन जागे साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस रासी है। हर नाम चेता अवर न पूजा एको सेवी अवर न दूजा पूरे गुर सब सच दिखाया सच्चा नाम निवासी है। भ्रम भ्रम जोनी फिर आया आप भूला जा खसम भुलाया हर जियो मिलै तं गुरमुख बूझै चीनै शब्द अविनासी है। काम क्रोध भरे हम अपराधी क्या मोह लै बोलहा ना हम गुण ना सेवा साधी डुबदे पाथर मेल लहो तुम आपे साच नाम अविनाशी है। ना कोई करे ना करने जोगा आपे कराव है सो होएगा आपे बख्श लह सुख पाए सदा साधही नाम निवासी है। ए तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज वापारा सच तन जम्या तोट ना आवै अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगणियारे नौ गुण की जै आपे बख्श लह नाम दीजै गुरमुख होवै सो पत पाए एकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ न होई गुर प्रसादी बूझै कोई गुरमुख होवै सो तन पाए साधही नाम निवासी है। अनल वाओ परम पुलाई माया मोह सोध न काई मन मुख अंधे किछु न सूझे गुरमत नाम परगासी है मन मुख होमे माया सूते अपना घर ना संभाले अंत विगूते पर निंदा करे बहु चिंता जाले दुखे दुख निवासी है आपे करते कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई नानक नाम रते मन निर्मल नामे नाम निवासी है मारू महला तीजा एको सेवी सदा थिर साचा दूजा लागा सब जग काचा गुरमति सदा सच सलाही साचे ही साच पतीजा है तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाता आपे लाए लए जग जीवन दाता आपे बख्शे दे वड्याई गुरमत ए मन पीजा है माया लहर शब्द निवारी ए मन निर्मल हो मैं मारी सहजे गुण गावै रंग राता रसना राम रवि जय है मेरी मेरी करत विहानी मन मुख ना बुझै फिर एयाणी जम काल घड़ी मोहत निहाले अन दिन आर जा शी जय है अंतर लोभ करै नहीं बुझै सिर ऊपर जम काल ना सूझै एथे कमाणा सो अगे आया अंत काल क्या की जय है जो सच लागे तिन साची सोए दूजा लागे मन मुख रोए दोहा सरिया का खसम है आपे आपे गुण में पीजा है गुर कै शब्द सदा जन सो है नाम रसायन ए मन मोह है माया मोह मैल पतंग ना लागे गुरमती हर नाम पीजा है सबना विच वरतै इक सोई गुर प्रसादी प्रगट होई हम मैं मार सदा सुख पाया नाय सच अमृत पीजा है किलविक दुख निवारण हारा गुरमुख सेव्या शब्द विचारा सब किच आपे आप वरतै गुरमुख तन मन पीजा है माया अग्न जलै संसारे माया अग्न जलै संसारे गुरमुख निवारे शब्द विचारे अंतर शांत सदा सुख पाया गुरमति नाम लीजा है इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे जम ना छोड़े बहु कर्म कमावे सतगुर भेटे ता मुक्त पाई है हर हर रसना पीजै है मनमुख अंतर भगत न होई गुरमुख भगत शांत सुख होई पवित्र पावन सदा है बाणी गुरमत अंतर पीजै है ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी त्रैगुण बदक मुक्त निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता अंदन नाम रवीजै है वेद पढ़ें हर नाम न बुझै माया कारण पढ़ पढ़ लूजै अंतर मैल अज्ञानी अंधा क्यों कर दुत्र तरीजै है वेद बाद सब आख वखाण ना अंतर पीजै ना शब्द पछाण पाप पुन सब वेद दृढ़ाया गुरमुख अमृत पीजै है आपे साचा एको सोई तिस बिन दूजा वरना कोई नानक नाम रते मन साचा सचो साच रवीजै है मारू महला तीजा सच्चा सच्चा तख्त रचाया निज कर वसया तिथै मोह न माया साधी साच वसया कट अंतर गुरमुख करनी सारी है सच्चा सौदा सच वापारा ना तिथै भरम ना दूजा पसारा सच्चा धन खटिया कदे तोट ना आवै ना बूझै सच्चा धन खटिया कदे तोट ना आवै बूझै को विचारी है सच्चा लाए से जन लागे अंतर शब्द मस्तक वड़ भागे सच्चा शब्द सदा गुण गावे शब्द रते विचारी है सचो सच्चा सच सा लाही एको वेखा दूजा नाही गुरमुत ऊचो ऊची पौड़ी ज्ञान रतन होमे मारी है माया मोह शब्द जलाया सच मन वसया जात तुद पाया सच्चे की सब सच्ची करनी होमे तिखा निवारी है माया मोह सब आपे की ना गुरमुख विरलै किन ही चीना गुरमुख होवै सो सच कमावै साची करनी सारी है कार कमाई जो मेरे प्रभाई होमै तृष्णा शब्द बुझाई गुरमुख सद ही अंतर सीतल होमै मारने वारी है सच लगे तिन सब किच पावै सच्चा शब्दे सच सुहावै एथे साचे से दर साचे नदरी नदर सवारी है बिन साचे जो दूजा लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापै नाही माया मोह दुख पारी है साचा शब्द जिना मन पाया पूर्व लिखिया तिनी कमाया सचो सेवै सच त्यावै सच रत्ते विचारी है गुर की सेवा मीठी लागी अनदिन सुख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होआ गुर की सेव प्यारी है से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे भाणे आप मिलाए सतगुर राखे से जन उभरे होर माया मोह खुआरी है गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कुटंब ना तिस माता एको एक रविया सब अंतर सबना जिया का आधारी है हो मैं मेरा दूजा पाया किछ ना चलै तुर खसम लिख पाया गुर साचे ते साच कमावै साचे दुख निवारी है जा तू देह सदा सुख पाए साचा शब्द साच कमाए अंदर साचा मंतन साचा भगत परे भंडारी है आपे वेखै हुक्म चलाए अपना भाणा आप कराए नानक नाम रते बैरागी मन तन रसना नाम सवारी है मारू महला तीजा आपे आप उपाए पन्ना सब मैं वरतै एक प्रसन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए सिर सिर धंधा आपे लाए जिस भावै तिस आपे मेले जिन गुरमुख एको जाता है आवा